Medium wave 600 hertz medium wave 1500 hertz FM सोशल एक मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है।

0: बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात

0: तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है। एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़ी शानदार बात।

0: है भी आपकी तो।
1: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह कितनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी।

0: मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे, अभी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे, ये कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: बनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, थोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती है। साथियों, ये कोई कहानी

ये सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया।

आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी,

बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसती रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए।

0: से सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: मन की बात प्रोग्राम मीडियम वेव दोनों एफएम एक दिव आकाशवाणी करगिल कसता मन की बात प्रोग्राम पुर्गी तर्जुमा प्रचुगत न्यान मजद
3: निरिंचन युलमीन नमस्कार सिंगता में छिरपेंग यांग रशिक यंतंग यंबो थुपी स्कप स्टॉप जस्पेका नलेक से थत खचन छिनतो रगेस्ट्रिटी फ्रॉम अचिक मलसाने अनु मेमांग से शोप्सना दजर स्पेशल लसिर स्ट्रुल बथोंगंदुक गानिश पेथों सरगेपना सोमार त्यांगना लमरिक थोबाचनक दिरिंग आस खोरतांग से गुजुक्सपु डेजर्ट लसुचिगी स्कॉर्पियन फ्रोस्पिंगन बोक समेत जखमा खाचिक दुनला झारखंडी रांचिया नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन ही स्तुरटुल गयानुक रकेस्त्रित गांगे रचनोपा मेंगर कैपक्यास खाकलेंस दितुस्पेका लोसो खोरतांग से जियानुक रकेस्त्रित थोगी रिकार्ड जिच्छा गुरुवेंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजसून शंकर देव मीना यंग कुलदीप कुमार खुंग लोकसो कैटेगोरी सुने लोग रिकॉर्ड चौसुन सुबह से गुमा मस खुंग सगा सिंगिंग रचना मुबारक प्रचुगत अचुनों इवेंट चगी रिकॉर्ड गांग पे लोग शुमांग दूर मीटर रिया रेस जकमाइनी सी नाल चौस मेंस 100 मीटर रेस पे नेशनल रिकॉर्ड रिस्पा सुम चापन चसुम दी स्पेशल लस्पंग फेतखन सेनोपा निस गरेंदर वीर सिंह ना अनिमेश कुजर खोंग यंबो मन की बात सिरपंग नाते स्प्रचावित नमस्कार अनिमेश यरंग नमस्कार यरंग गोरेंदर वीर सच श्री अकाल
4: हेलो सर हेलो सर
3: कसनी फुनोन यंतस छोर ग्यालचिक अशिवस यंती जोड़ीस नर्चन लस रिक्स्तने तांस मुद्पो मोसिकी अनुक जुगल बंदी थू मचात पिन तादरेश चेनु अनुक आं थोप चसुं मेंगा चिगीस चलेंश तांगत यां एचिक पुस दूला यासरत यां रेस्पा सुम पेकां द्यावबा फेतत यंती स्कोर्पु मन लोसिकलुस नास समेत स्निंता मी चिर नियन खानुन ला यंती स्कोर्पें चिर तास्पा चानर ग्याल बादुक यंती लजून स्कोर्पें खुंगार तास्पेक चाचुक पार गोशादुकपा
4: हेलो सर निमिंगपो अनिमेश खजूरिन ng मीटर न्यबग्याना मीटर जिबग्यांग नुक रिकॉर्ड चखनचगिन ng छत्तीसगढ़ ने इन पसरिया दरे ओडिशे फ्यरसेत रगाल बिलोंग एशियन मेडल यंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल खुरे योंसखान इन मिनिया यंग स्टोंग इशुर सक्षिन यानुक स्कूल पास बसर ग्यापना एथलेट से गुजुग बसखानिन सेंक स्कूल अंबेकापुर ना ng पास छखानिन यंग दुन लंगास फुटबॉल सेट पिंजो यंग कोविड तुस पुजना नि अताना अमास ना फिस्ता बिंग सेरचे मोमो इजिंच मसल्स कोविड छोटर ग्यापना नि अचुनो कातोस नाजेस रगलखा गे थोरिका ग्राफ शिक द्रुल बच्चा इन सुखजरे गानो नास खालेंस खान इनमिन यान दंग नु फायुले थोरिका ngar damcha inzerbi irdang met pinjuya dang as phayule thorikana bingse miyule thogir sena nu phayul bahrate goyot benut pinju kasa
3: yang grovender veer ji scorpion chi sambego
5: hello sir nga grovender veer in paju यंग इंडियन नेवी अंग नोक छुनसे ऑफिसर चिगिन यंग फायुली सुबह से उर्चन स्प्रिंटर चिगिन नास मीटर अर्गियां नोक शुचु एशारे अर्गुई नेशनल रिकॉर्ड चोसेन यंग शुचु एशारे चिगी बैरियर युगिस यंग बंतांस खान नग गोमा हिंदुस्तानी इन मिनिया नाजरा इमाल से काना गोस्तक निस्कुआ नोक फायुली रोक्स बे फ्रालुक शिग बेन्यूत जो नि अताना अपो निस्

श्री आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम।

0: ग्रह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को
1: राम राम।
0: और कमलेश बहन, देखो आज जो है मई का अंतिम सप्ताह है और जो मई का आखिरी दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो कि हमारी बहनों को जानने भी चाहिए और पता भी होने चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं।
2: बिल्कुल, और कोई भी जो दिन होता है वो हमारे लिए बहुत ही खास होता है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे हो रविवार। लेकिन कुछ बहनों को हम याद दिला देते हैं कि देखो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बहनें भूल भी जाती हैं कई बार कि आज रविवार है। तो देखिए बहनें, हमारी बात सुनिए, आज रविवार है और हम दोनों सखियां आ गई हैं आपसे कुछ बतियाने के लिए और कुछ रोचक जानकारी देने के लिए।
0: बिल्कुल, तो जैसे कि कमलेश जी हमने बात की थी कि आज 31 मई है, तो हम बताते चलें कि आज का दिन है जो बहुत विशेष है। जैसे कि कहा भी था कि आज का दिन समाज के निर्माण में बड़ा सहायक होता है, क्योंकि आज है तंबाकू निषेध दिवस। और जो ये तंबाकू निषेध दिवस है, हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में, कमलेश जी देखो बहुत अच्छी तरह से जानती होगी कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन करता है तो उस घर से पूरा परिवार बहुत ही परेशान हो जाता है।
2: बिल्कुल, और जब उन्हें बोला जाता है कि भी नशा क्यों करते हैं, कहते हैं मैं तो तनावग्रस्त हो जाता हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, मैंने बच्चों की फीस भरनी है, मुझे ये करना है। आप ये सोचिए, जब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं तो नशे के लिए आपको वक्त और पैसा वो कहाँ से मिला? ये तो फिर वही वाली बात नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक गलत, जब नशा करने वाली आप चीज में जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपके परिवार पर क्या बीतेगी, क्योंकि आप अपनी जो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि कदम बढ़ाओ उजाले की ओर, नशा अंधेरे की डोर है।
0: बिल्कुल, और देखो कि जैसे मतलब ये वाली बात तो अलग है कि पैसे कहाँ से लाते हैं वो करते हैं, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कमलेश जी ये है कि वो अपने शरीर का भी तो नुकसान करते हैं, तन और मन दोनों पूरी तरह से खोखला हो जाता है। और जब व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उस समय उसे इतना पता नहीं चलता, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसका जो शरीर है पूरी तरह से बीमार होता चला जाता है और वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में जो हमारी बहनें होती हैं उनको बहुत अधिक समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सारे काम अकेले ही वहन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो ये तंबाकू है, इसे दूर रहने के लिए बचपन से ही हमारी बहनों को, जो घर के सदस्य हैं उनमें ये वाली बात डालनी चाहिए कि चाहे पति हो, भाई हो या बढ़ते हुए बच्चे हों, अगर मतलब वो किसी ऐसे नशे की ओर जा रहे हैं तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि हर समस्या का हल प्यार से और घर में ही मिलता है। किसी भी नशे का सेवन केवल और केवल हमें नर्क की ओर ही लेकर जाता है।
2: बिल्कुल, जब आप बीमारियों की बातें कर रहे थे, जब इतने सारे लोग नशा करने के बाद बीमार होने लगे, तब 1987 में निर्णय लिया गया कि नशा जो है हमारे लिए कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, कितना हमारे रिश्तों को खराब करता है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए 1987 में इस दिन का आरंभ हुआ। तो ये केवल एक ये नहीं कि हमने आज सोच लिया कि चलो भी हमने सुन लिया तो आज थोड़ी जो है सिगरेट कम कर लेंगे या और कुछ जो नशा करते हैं उसमें कमी कर लेंगे, क्योंकि आज हमें जागरूक होना, हमें तो प्रत्येक दिन जागरूक रहना है। केवल ये नहीं सोचना कि भाई आज हमने बता दिया आपको कि आज ये दिन है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी आपकी पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, या कई बार आजकल बच्चे भी बोल देते हैं, उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो आपको बुरा भी लगा, आपने कहा चलो चलो आप लोगों का मैंने मान रख लिया और आज के दिन थोड़ा सा मैं इस चीज से पीछे हट जाता हूँ। यदि आप आज के दिन पीछे हट रहे हैं तो हर दिन क्यों नहीं पीछे हट
0: रहे? बिल्कुल, और देखो वही बात है कि अगर आपको नशे में डूबना ही है तो ऐसे नशे में क्यों डूबें जो कि आपको नुकसान की ओर लेकर जाएं। नशे बहुत तरह के होते हैं, अगर आपको संगीत का शौक है आप संगीत का नशा करिए ना, अगर आप पढ़ने का नशा करिए, ये नशे जो है बहुत अच्छे भी हैं और व्यक्ति को किसी न किसी अच्छे स्थान पर लेकर जाते हैं, उन्हें जीवन की नई राह दिखाते हैं।
2: बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि आकर्षण ही होता है नशा, तो आकर्षण का पर्दाफाश निकोटीन और तंबाकू की लत का आपको करना है मुकाबला। और इसी अच्छी उम्मीद के साथ क्यों ना हम एक ऐसा ही अपनी बहनों को गीत सुनवाएं जिसमें छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो तो सुनेंगे तभी पता चलेगा।

0: बताओ घूमने कहाँ जा रही हो गर्मी की छुट्टियों में? हर कोई जो है एक दूसरे से यही सवाल करता है, तो मैं भी पूछती हूँ आप भी पूछते हो, लेकिन बताता कोई भी नहीं है। कब बताएंगे? जब या तो बीच में वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर अपनी फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करके डालेंगे कि हम यहाँ पहुँच गए, अरे हमने तो बहुत पहले बुकिंग करा ली थी, फिर क्या करें, बच्चों के साथ हमें इतना काम था कि बता ही नहीं पाए। और वहाँ से आने के बाद फिर जो वहाँ की वो अच्छी यादें जो लेकर आए हैं वो बताएंगे, वहाँ का खाना क्या है वो बताएंगे, क्योंकि जो हम यहाँ का अपना घर का जो खाना खाते हैं वो, और जिस जगह पर आप जाते हैं पर्यटन के लिए,
1: बिल्कुल
0: दोनों में तो फर्क होता ही है,
1: दोनों में फर्क होता है। लेकिन हमारे देश की देखो बात ही कुछ खास है और अलग है। अगर यहाँ के, अब तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ के जो गांव हैं वहाँ पर पर्यटन स्थल के बहुत सुंदर सुंदर जो स्थान बने हुए हैं दर्शकों को मोहित भी करते हैं, और जो बात की आपने खाने की, वो खाना भी बिल्कुल घर जैसा ही देते हैं।
0: बिल्कुल, और आप होम स्टे की बात कर रहे हो शायद,
1: बिल्कुल। आजकल देखो बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आपको घर जैसा भी फील होगा, और साथ साथ आप जो चाहते हैं कि भाई हमें वहाँ अपने जो देश है हमारे राज्य की जो खूबसूरती है उसको भी निहारना है, तो वो दोनों बातें आपकी पूरी हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और जो इस होम स्टे को चलाते हैं तो उससे उनकी आय भी बढ़ेगी, उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, अपने आप भी वो रोजगार देंगे और दूसरे जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है उसके बारे में लोगों को और अधिक पता चलेगा।
1: बिल्कुल, तो चलो फिर हम इसी बात पे, जो अपनी बहनें हैं उनको ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर पर एक बातचीत सुनवा देते हैं, हमारी बहनें इसको जानेंगी समझेंगी। तो हर्षवर्धन त्यागी से कमल किशोर बातचीत कर रहे हैं।
2: श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और यहाँ की लोक संस्कृति, परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण जो रहन सहन है देश विदेश के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करता है। ग्रामीण पर्यटन न केवल गांव की पहचान को एक नई ऊंचाई देता है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार और

0: जानते हैं कि जो शहर की जो भागम भाग है, थकान है, ऊब है, उसे दूर करने के लिए लोग गांव की ओर जाते हैं, कुछ पल सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। चलिए आज हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ग्रामीण पर्यटन से गांवों का विकास होता है, लोगों का विकास होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा किसान हर्षवर्धन त्यागी जी। हम आपका स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जी, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हर्षवर्धन जी, ये ग्रामीण पर्यटन, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
1: पहले तो मैं सर ये कहना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं हमारा देश गांव का देश है और इस देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव से जुड़ने का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ना
0: जी,
1: जो कि ना केवल हमें सुकून देगा, हमें सच्ची खुशी है वो प्रदान करता है। आज शहर में भागती दौड़ती जिंदगी से जैसे धीरे धीरे लोग उबते जा रहे हैं, तो देखने में आया कि बीते 5 से 10 वर्षों में काफी शहरी लोगों का जो रुझान है वो गांव की तरफ बढ़ा है। और जहां बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, पर बीते कुछ वर्षों में, मैं खुद स्वयं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, खेती के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन ने एक महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया है
0: जी।
1: शहर के लोग अब जो है पर्यटन की दृष्टि से पहले केवल पहाड़ों पर जाया करते थे। पहाड़ों पर जाने का उद्देश्य यही था कि वो एक भागती दौड़ती जिंदगी से दूर हटकर शांति प्रिय जगहों पर जाना चाहते। जो हमारे आसपास के गांव हैं उसमें संसाधनों के अभाव थे, शहरी व्यक्तियों को कुछ संसाधन चाहिए जो उन्हें पहाड़ों पर मिलते थे लेकिन गांव में नहीं मिल पाते थे। बट बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने किसानों को इस दृष्टि में सहयोग करना शुरू किया कि वो ग्रामीण पर्यटन को अपनी रोजगार का एक माध्यम बनाए, और उस दिशा में काम करते हुए कुछ किसान आगे आए, उन्होंने अपने गांवों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया। और देखने में यह आ रहा है कि अब उस ग्रामीण पर्यटन की जो विचारधारा थी उसको शहर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और वो अब गांव की तरफ जा रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से। वो गांव में समय व्यतीत करते हैं, किसानों से मिलते हैं, खेती को भी देखते हैं कि किस प्रकार उनका भोजन जो है किसान उत्पादन कर रहा है उसका। हम स्वयं ग्रामीण पर्यटन में काम करते हुए शहरों से जो लोग हैं उनको सहूलियत देते हैं अपने गांव में कि वो आए, रुके, ठहरे, और वहां की जो सुंदरता है, जैसे हमारा गांव जो है वो गंगा के बहुत नजदीक है
0: जी,
1: तो माँ गंगा का जो है वो दर्शन भी करते हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो बागवानी का क्षेत्र है तो वो बागवानी का आनंद लेते हैं, किस प्रकार जो है वहाँ फल लग रहे हैं, सब्जियों की खेती हो रही है, वो सब देखते हैं। उससे जो है काफी किसानों को सहयोग मिल रहा है, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती हो रही है
0: जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास कर रही है, और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है मन की बात कार्यक्रम है उसमें भी पर्यटन का जिक्र किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गांवों का देश है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लोग जो गांव वाले हैं वो थोड़ा सा शहर की ओर आना चाहते हैं, लेकिन जब शहर में आकर के देखते हैं कि यहाँ की जो जिंदगी है वो आबोहवा लगभग लगभग जैसे कि प्रदूषण कह सकते हैं हम, जो आबोहवा वो बदल चुकी है, तो लोग फिर एक बार फिर शहर से गांव की ओर रुख करना शुरू किए हैं, खेती बाड़ी देखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं?
1: देखिए, मैं ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ हम FPO के माध्यम से अपने किसानों को जोड़कर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो हमारे जो FPO के उत्पाद है वो बेचने हम शहर आते हैं, तो शहर के लोगों से हम मिलते हैं। हमें ये देखने में आया है कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा अब थक चुके हैं शहरी जिंदगी से, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर में जो है वो वातावरण अब उन्हें नहीं मिलता जो उन्हें सुकून दे सके
0: जी।
1: तो हमने अपने गांव में, अपने जो क्षेत्र है उसमें हमारे FPO के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के लिए एक मॉडल फार्म विकसित किया, जिसमें हमने जो है उन शहर के जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे ग्राहक थे, जो हमारे उत्पादों को खरीदते थे, वो हमारे साथ जुड़े, तो हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि आप हमारे गांव में आओ, रुको, देखो क्या है और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। तो हमें देखने में आया कि बीते 3-4 वर्षों में हर साल जो लोग थे जो हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं
0: जी।
1: एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी होती है, जो लोग आते हैं वो वहां पर आकर जो है उस वातावरण को महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, उसकी फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनके जानकार उनके मित्र जो है उसको देखकर आकर्षित होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं, ऐसे करते करते एक परिवार बढ़ता जा रहा है,
0: यानी कि चेन बना हुआ है। हर्षवर्धन जी, ये आपने कहा कि जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो आबोहवा है उससे महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम इसमें सिर्फ आबोहवा, वातावरण, प्रदूषण, इन सबसे परेशान होकर के गांव की ओर जाते हैं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं या कुछ और भी बात है? जैसे अभी आपने एक बात कही, जो उत्पाद होते हैं वहाँ के, जैसे जो खासकर जो हस्तशिल्प, जो कलाएं होती हैं, गांव से लेकर के आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनको एक अलग अनुभव होता है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ना केवल उत्पाद, मैं एक और तरफ आपकी दृष्टि लेके जाना चाहूंगा, गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पुराने समय से चले आ रहे हैं
0: जी।
1: हर गांव की एक अपनी

0: सांस्कृतिक व्यवस्था है और अपना एक माहौल होता है गांव का, जिसको वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं, लोग जो है उन त्योहारों के साथ भी जुड़ते हैं। तो ना केवल ये है कि वो सुकून चाहते हैं, सुकून के साथ साथ एक आनंदमय वातावरण वो वहां देखते हैं, जीवन शैली वहां देखते हैं, उसको भी वो वहां एंजॉय करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है,
1: बिल्कुल,
0: भाषाओं की विविधताएं हैं, कल्चर की विविधताएं हैं, भोजन की विविधताएं हैं, उन सबको अब धीरे धीरे शहर के लोग जो है एंजॉय करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल शहर की भागदौड़ से दुखी होकर उधर जा रहे हैं, जो गांव के अपना कल्चर है, जो गांव का अपना एक इकोसिस्टम है, वो भी उनको आकर्षित कर रहा है। तो वहां की अलग अलग तरह की कलाएं जो है उनसे रूबरू होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ पे जो है रागनियां पुराने समय से होती थी, उसका आनंद केवल गांव के लोग लेते थे। अब हम देखने में आ रहा है कि रागनी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें शहर के लोग भी आते हैं।
1: शोर शराबा नहीं है जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं गांव में, उसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं है, उसमें परंपराएं भी शामिल हैं, लोक गाथाएं शामिल हैं। एक चीज और देखने को मिला है कि गांव में है उसमें सामूहिकता है, उसमें अकेलापन नहीं है गांव में।
0: मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा
1: जी।
0: हम सब शहरों में जो है कंक्रीट की बनी बिल्डिंगों में रहते हैं
1: जी।
0: अभी गर्मी का समय चल रहा है, गांव में आज भी कच्चे घर बने हुए हैं, वो मिट्टी से लिपाई किए हुए हैं, गोबर की लिपाई किए हुए घर हैं। उनमें शहर के लोगों ने अपना अनुभव बताया, उन्होंने देखा कि शहर में जो हम कॉन्क्रीट में रहते हैं, जब हम उससे अलग हटकर गांव में आते हैं जहां एसी नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी उस मिट्टी के कच्चे घर में जब आप रहते हैं तो आपको वो गर्मी वो समस्याएं नहीं महसूस होती जो शहर में हो रही हैं। यहां बगैर एसी के शहर में नहीं रह सकते, लेकिन गांव में आज भी आप जो है इतनी भीषण गर्मी में भी बिना एसी बिना पंखों के भी जीवन काट सकते हैं। ये भी कुछ लोगों को बड़ा चकित करता। तो उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं अब शहर के जो आजकल के युवा हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को साइंटिफिक रूप से देखते हैं, तो साइंटिफिक रूप से भी वो आजकल समझ पा रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, वो उनकी सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद है। तो मैंने ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मुझे हमारे साथ जो जुड़े हुए उपभोक्ता हैं, जो आके हमारे फार्म पर आते हैं, रुकते हैं, वो बताते हैं, उनसे मुझे समझ में आया कि अब लोग उस दृष्टि से भी समझ पा रहे हैं कि सेहत के नजरिए से भी हमें जो है गांव के साथ जुड़ना चाहिए, उस आबोहवा का आनंद लेना चाहिए।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं, सभी जानते हैं कि हर मामले में गांव का जीवन जो है वो बड़ा आनंददायक होता है।
0: इसमें मैं एक और चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा, बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जो है लोगों का रुझान इसलिए भी बढ़ा है कि हमारे जो तरह तरह के जो हमारे कल्चर्स हैं, उनको स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहां के स्टेट में जो वहाँ की लोकल गांव देहात का जो कल्चर है वो उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करते हैं, तो लोगों को भी जानकारी मिलती है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है, देश विदेश से लोग तक आते हैं भारत में इस प्रकार का कल्चर है, वो उसको देखने के लिए गांव तक जुड़ते हैं
1: जी।
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में भी जो पर्यटन है, गांव का जो पर्यटन है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्या कहना चाहिए?
0: निश्चित तौर पर सर, आज के समय में अब मैंने जैसे बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में भी धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को जो है सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि वो रोजगार के जो अपने जरिए हैं वो गांव में बनाएं और अपने उत्पादों को प्रसंस्कृत कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए ग्रामीण पर्यटन की तरफ भी काम करें। छोटे छोटे समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण पर्यटन को जो है धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं अपने गांवों में। गांव के नजदीक में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं, मेले आयोजित होते हैं, उनको भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें शहर के लोग अपनी भागीदारी करते हैं, वो उस तरह से भी जुड़ते हैं गांव से।
1: हर्षवर्धन जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो ग्रामीण पर्यटन है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी बड़ी होती है?
0: इस देश में महिलाओं की भागीदारी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और गांव में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, चाहे वो काम खेत का हो, चाहे वो खेत के अलावा घर का हो। और अब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यवसायीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं हमारे किसान भाई, उसमें महिलाएं पूर्ण रूप से, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद उनसे आगे बढ़कर काम कर रही है, जिसमें लोकल स्तर पर कढ़ाई बुनाई सिलाई छोटे छोटे उत्पादों को तैयार करने की बात हो, उसके अलावा जो गांव में आपने जो देखा होगा कि जो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, महिलाएं पुराने समय से ही उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है भागीदारी देती है,
1: बढ़ चढ़कर भाग लेती
0: जी। तो वो सब चीजें जो है आकर्षक का केंद्र बनती हैं, और जो शहरों के लोग जब गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ केवल जो है हम जिसकी बात करते हैं कि महिलाओं को भारत में जो है वो दर्जा नहीं दिया था, ऐसा नहीं है, गांव में पुराने समय से ही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी, और अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही है, क्योंकि अब सरकार जो है महिलाओं को और ज्यादा अवसर दे रही है
1: जी
0: आगे आने का
1: जी। हर्षवर्धन जी, आजकल देखते हैं कि जो हमारे जो युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, और अक्सर देखा जाता है कि युवाओं को शहर बड़ा आकर्षित करता है, और आकर्षित करने का एक रीजन ये भी है कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, और दूसरा ये है कि रोजगार के जो साधन है वो लगता है कि गांव में कम है, तो इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
0: देखिए, एक समय था

0: युवा जो है पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ, क्योंकि उनको रोजगार के अवसर नहीं थे, संसाधनों के अभाव थे गांव में। लेकिन देखने में आ रहा है कि बीते 10 वर्षों में काफी भारत में जो है अर्थव्यवस्था पर काम किया गया सरकारों द्वारा। तो अब किसानों के जो बच्चे हैं उनके पास अवसर है कि वो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियां अपने गांव में ही स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, युवाओं के पास बहुत अवसर गांव में खुद आ रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन भी उनमें से एक अवसर है, युवा जो है सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अपने गांव में जो है अगर कोई इकाई स्थापित करते हैं तो उसको फिर आप, क्योंकि पढ़े लिखे युवा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। शहरों के लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हम शहरों के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और देखने में आता है कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट धरातल पर मिल रहा है। अब जो पलायन था युवाओं का, जो पहले गांव से शहर की तरफ जाते थे, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उल्टा देखने में आ रहा है कि शहर के लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर ग्रामों में जो है व्यवसायीकरण स्थापित कर रहे हैं।
1: यानी कि यह कि युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे एक साथ चले, अगर वहां की जो बातें हैं, वहां की जो खासियत है, उनको भी सभी युवा मिलकर के एक साथ लाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है गांव जाना नहीं चाहते हैं, गांव पर्यटन की ओर नहीं जाना चाहते, पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहते, उसके लिए उनके पीछे एक रीजन होता है कि नहीं नहीं वहां तो सुविधाएं नहीं है, अब नहीं जाना है। इस प्रकार कई प्रकार की धारणाएं होती हैं, तो इसमें और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, जो मूल समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी शुरू में, वो थी सबसे पहले ऊर्जा की, बिजली की। आज के समय में सोलर के माध्यम से हर गांव तक बिजली का पहुंच हो चुकी है, सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। उसके अलावा दूसरी समस्या आती है, जैसे आपने बताया, रोड ट्रांसपोर्टेशन की,
1: गांव तक
0: पहुंच बहुत कम हो गई बाहर के लोगों की। अब सरकारों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि हर गांव से शहर तक जाने वाली सड़क को जोड़ा जा रहा है।
1: जी,
0: अब वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी नहीं रही। तीसरी समस्या जो आपने बताई खान पान की, तो मैं आपको बताऊं, शहरी खान पान से गांव का खान पान पुराने समय से ही बहुत बेहतर था, शुद्ध था, देसी बेशक हो सकता है, जिसको आप देसी कह सकते हैं, लेकिन वो उसका एक अपना ही स्वाद और अपना ही एक महत्व है, जो कि अब शहर के लोग समझ रहे हैं। शहर के जो भोजन आज के समय में खा रहे हैं, जिसका उनको सोर्स ही नहीं पता, उन्हें पता नहीं, लेकिन वहीं जब वो उल्टा गांव में जाते हैं तो वो सामने आपके खेत से तैयार होकर आने वाली चीज आपके सामने तैयार की जा रही है, तुरंत आपको जो है परोसी जा रही है। तो उस तरफ जो है ये चीजों की अवेयरनेस अब बढ़ गई है, अब लोग समझ गए हैं कि गांव का भोजन है वही एक्चुअल में भोजन है, उससे ज्यादा शुद्ध भोजन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता।
1: जो आय के जो साधन है वो गांव में पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो जो पर्यटन है उसमें से तो होता ही होता है, उसके अलावा जो वहां के जो उत्पाद है, वहां के जैसे कि हमने कहा हस्तशिल्प है, वहां की जो सामान है, उसके जरिए भी अपने आय के स्रोत को भी बढ़ाया जा सकता है।
0: जैसे हमारा जो क्षेत्र है हापुड़ का एक मूढ़ा होता है बैठने के लिए, वो बहुत फेमस है हमारे क्षेत्र में। तो अब हमारे यहाँ पे जो है धीरे धीरे देखने में आया, जो लोग आते हैं वहां से वो फर्नीचर परचेज करके लेके जाते हैं और शहरों में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी काफी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। वहाँ ट्रेडिशनल तौर पर जो है सरकंडे से और वहाँ की जो देहात में उपलब्ध सामग्री है उससे तैयार किया जाता है,
1: बांस वगैरह सब।
0: जी, तो उस चीजों से वो तैयार किया जाता है, उसका फर्नीचर जो है तैयार किया जा रहा है, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है बड़ा सपोर्ट मिल रहा है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी गांव जाता है गांव की कोई ना कोई चीज जरूर लेकर के आता है, और जब इन सब चीजों को, इन सब सामानों को जब गांव से खरीद कर लेकर आते हैं तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी मजबूत होता है, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था। और हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से कृषि पर आधारित ही है, और वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है।
0: सर, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के युवा है जो शहरों में है, उन सब की जड़ें कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: ये देश कभी भी ऐसा नहीं था कि शहर से शुरू हुआ, ये गांव से ही शुरू हुआ देश है।
1: जी जी,
0: तो हर किसी की जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं। अब समय आ गया है, हम जब विकसित भारत की तरफ बात करते हैं तो वापस अपनी जड़ों पर हमें जाना पड़ेगा, अपनी जड़ों को ठीक करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये भारत का जो वृक्ष है ये और फलदार होगा और छायादार होगा, और न केवल अपने लिए बल्कि समूल विश्व के लिए ये जो वृक्ष होगा भारत का, वो जो है बड़ा ही पॉजिटिव वातावरण बनाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा।
1: जी हर्षवर्धन जी, बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इसमें बात करना चाहें तो बहुत सारा समय निकल सकता है, लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। चलते चलते अपने जो युवा है, जो शहर के जो युवा है, जो गाँव के जो युवा है, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस पर्यटन के विषय में?
0: ग्रामीण पर्यटन के लिए मैं हमारे शहर के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो अब, क्योंकि बहुत सारी जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं हमारे देश में पर्यटन की दृष्टि से, पूरा विश्व जो है पर्यटन के लिए भारत में आता है।

0: अगर हम इस पर्यटन को कुछ ही जगहों तक सीमित न कर ग्रामीण पर्यटन की तरफ ले जाए और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे युवाओं का होगा
1: जी,
0: तो उन युवाओं को आगे आना चाहिए, गांवों को विकसित करने में पर्यटन की दृष्टि से काम करना चाहिए। बहुत तरह की संभावनाएं हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जो है और अधिक मजबूती से कार्यान्वित हो जाएगा, रिजल्ट दिखाएगा अगर हमारे शहर के जितने भी युवा हैं एक इस तरफ सोचना शुरू करें। 15 दिन का समय निकालकर अपने जीवन से एक बार गांव में जाएं, गांव में रुकें, देखें बाकी क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि कितने अवसर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से वो जो है वहां विकसित कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना एक व्यापार बना सकते हैं जिसमें ना केवल वो देश को आगे लेके जाएंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और एक समग्र रूप से जो है हमारा देश जो है विकसित होगा, सोसाइटी विकसित होगी, समाज विकसित होगा।
1: जी हर्षवर्धन जी, एक आखिरी प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से या आज के डिजिटल युग को देखते हुए?
0: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पूर्व मैंने आग्रह किया था आकाशवाणी की टीम से कि वो हमारे गांव के पास आए, वहां जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है कि माँ गंगा के आसपास के घाटों को विकसित करे, तो उसमें आकाशवाणी की टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया, उसको प्रसारित करने के लिए प्रसारण उसका किया, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश तक उसकी जानकारी पहुंची। इस प्रकार से मीडिया चैनल्स जो है, जितने भी तरह तरह की मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे उसके बाद जो है वो प्रिंट मीडिया है, आपकी जो है ये आकाशवाणी की टीम हो गई, ये सभी लोगों को जो है हमें लगता है कि एक इस तरफ जो है प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने ग्रामीण जो पर्यटन है उसको धीरे धीरे प्रमोट करें, शहरों तक लेके जाए, पूरे विदेश तक लेके जाए
1: जी,
0: ताकि लोगों को ये पता लग सके कि भारत कितना विविधताओं का देश है। इस पर अगर हम निरंतर इसी प्रकार प्रयास करते रहे तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि अगले 10 वर्षों में सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसका जो है प्रसारण होगा, प्रचार होगा और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था ग्रामीण पर्यटन के को साथ में लेकर जरूर बनाएंगे।
1: जी हर्षवर्धन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे युवाओं को भी आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। हर्षवर्धन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर। हमारे प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी से ये बात कर रहे थे कमल किशोर। और अब बहनों के लिए मनोरंजन की बात।

0: और कमलेश आज 31 मई है, 31 मई को हम अपनी बहनों को बता दें, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं जो हमारी बहनें होती हैं वो हर मोर्चे पर डटी रहती हैं, चाहे घर हो, बाहर हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, सभी जगह पर वो अपनी मिसाल बनाती हैं। तो हम अपनी बहनों को बता दें कि हमारे देश में अनेक ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने घर और साथ साथ अपने साम्राज्य का भी लोहा मनवाया है, और आज ऐसी ही एक वीरांगना की जयंती भी है। तो समझ ही गई होगी कमलेश हम किन की बात कर रहे हैं।
1: हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की एक महान शासक थी। उनका जीवन साहस, न्याय, प्रशासनिक सूझबूझ और सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान है उसकी अनूठी मिसाल बन गया है।
0: बिल्कुल। और जो उनका जन्म है वो महाराष्ट्र के चौंडी गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जो जीवन था वो बड़ा संघर्षमय रहा, लेकिन वही बात है कि संघर्षों के साथ साथ उन्होंने मजबूत नेतृत्व करके एक मिसाल बनाई। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वो एक ऐसी महारानी साबित हुई जो केवल महलों में बैठकर राज नहीं करती थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद हाथी पर सवार होकर तीर कमान थामकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए उतर पड़ती थी।
1: और जब न्याय की बात करें तो न्याय के मामले में भी वो बहुत ही सख्त थी, और चोर डाकू का आतंक उनके राज्य में था ही नहीं। और जब हम बात करें उनका ऐतिहासिक योगदान क्या है, तो जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार उन्होंने ही करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर के मार्गों पर यात्रियों के लिए उन्होंने सुविधाएं भी बनवाई। जो सड़क मार्ग थे उसका भी उन्होंने अच्छे से निर्माण करवाया, और बीच बीच में धर्मशालाएं भी बनवाई जिससे कि यात्रीगण वहां पर ठहर सके।
0: बिल्कुल। और देखो ऐसी थी हमारी वो जो ये अहिल्याबाई होलकर महारानी है लोकमाता, कि आज भी मतलब उनकी बातों को याद रखा जाता है। और एक और बात हम अपनी बहनों को बता दें कमलेश, कि उन्होंने महेश्वर को कपड़ों के उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। और प्रसिद्ध हमारी बहनें भी साड़ियों की बड़ी शौकीन होती हैं, तो अपनी बहनों को हम बता दें कि प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों की शुरुआत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने स्थानीय बुनकरों और महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया था,
1: और किसानों के लिए उन्होंने टैक्स भी कम किए, कुएं बावड़ियां बनवाई, और सबसे बड़ी बात पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगवाए। तो हम भी यही कहेंगे कि जो हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर है उनसे हम बहने कुछ सीखें, और आज उनको हम नमन करते हैं।

0: और कमलेश, आज का जो रविवार है वो आखिरी रविवार है माह का, और हमारी बहनें और हमारे भाई भी, बच्चे भी जानते होंगे कि जो आखिरी रविवार होता है उस दिन होती है मन की बात,
1: और सभी श्रोता जो है और हम भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात में हमसे क्या क्या कहने वाले हैं।
0: और देखो, आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। आज जो 134वां एपिसोड था कमलेश, उन्होंने और सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारे जो भारतीय एथलीट हैं उनका जो शानदार प्रदर्शन रहा और जो खेल जगत की, उन्होंने बहुत सारी ऐसी विभूतियों के बारे में भी बताया जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जो सबसे पहले हमारे जो एथलीट इन दिनों छाए हुए हैं, उन्होंने गुरविंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की बात की जिन्होंने एथलीट में एक दूसरे का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देखो, गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की रेस में कड़ा मुकाबला किया और 10.9 सेकंड में उन्होंने रेस पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक होने का गौरव हासिल किया।
1: क्या बात है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं,
0: बिल्कुल
1: वो खेल की तरफ अग्रसर हैं और उसमें नाम भी कमा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, इसके साथ साथ ही आज हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने भी आम की बात भी की। गर्मियां हों और उसमें आम ना हो तो ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने जो हमारे विभिन्न राज्य में अलग अलग तरह के आम मिलते हैं, दशहरी आम, केसर आम, लंगड़ा आम, सिंदूरी, तोता, माल्टा, इन सब की बात की। और देखो, आम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, आम खाने में भी स्वाद लगता है और साथ ही बात यह है कि गर्मी से हमारा एक तरह से बचाव भी करता है अगर इसको विभिन्न पेय पदार्थों की तरह से प्रयोग कर लिया जाए।
1: और जो रसोई है उसमें जब हमारी बहनें जाती हैं तो गर्मी में उनको भी अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का, बुजुर्गों का, यानी मौसम के हिसाब से भी उन्होंने बात करी कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा, और इससे जो है बचाव भी जरूरी है। तो हमारी रसोई है, खेत खलिहान है, इनकी जरूरत पड़ती है हर जगह। और गर्मियों की जब हम बात करें तो हर कोई यही चाहता है कि गर्मी से हम
0: बचते रहें
1: और स्वस्थ जीवन शैली को
0: अपनाएं। गर्मी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पानी भी पीते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, नमामि गंगे अभियान, उस पर भी उन्होंने बात की कि किस तरह से गंगा डॉल्फिन को 13 घंटों के प्रयासों के बाद बचाया गया और स्वस्थ करके उसको सुरक्षित छोड़

0: जब हम बात करते हैं योजना की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है वो प्रमुख जीवन बीमा योजना है रेनू, और इसमें जो नामित व्यक्ति है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जो जीवन बीमा कवर है वो प्रदान किया जाता है, जिसका सालाना प्रीमियम जो है 436 रुपए है, और इसमें जो आवेदन है वो 18 से 50 साल के जो व्यक्ति हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और ये जो स्कीम है वो 1 साल के लिए मान्य है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जब आप वहाँ पर बीमा करवाने जाएं तो किसी बैंक या डाकघर में आपका खाता बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, और देखो जीवन ज्योति की बात जो तुमने कही, इसके साथ साथ हमने आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उस पर चर्चा की थी। इसके साथ साथ कमलेश, ये जो नशामुक्त परिवार बनाने में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी बहुत ही निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने सदस्यों पर, अपने बच्चों पर नजर रखती हैं कि वो किसी गलत नशे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई एक बार नशे की गिरफ्त में आ जाए तो हम सभी जानते हैं कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक हर तरह से टूट जाते हैं, और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे में हमारी बहनों और महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको जोड़ कर रखें, और अगर कोई बच्चा, उनके घर का कोई सदस्य गलत नशे की ओर बढ़ रहा है तो वो उसको उस ओर से बचाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की चौखट पर जब तक औरत की सूझबूझ का पहरा होता है तो नशे का अंधेरा वहां पर कदम नहीं रख सकता।
0: और हमारी जो बहनें हैं कभी मान से कभी पनुहार से इस चीज को जो वो दूर करती हैं, उनको ये पता है कि इस समय आपको ये काम गुस्से में करना है, इस समय जो है वो आपको प्यार से काम करना है, क्योंकि हैं तो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए। और कई बार मजाक भी करते हैं कि भैया हम जो पहिए हैं वो अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा, ये तो देखो रहेगा ही, लेकिन जब हम जीवन को चलाते हैं, जब हम परिवार को चलाते हैं, तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान
1: रखना पड़ता है।

0: और कमलेश जो हमारी बहनें आज का हमारा ये कार्यक्रम सुन रही हैं, कई बार उनका मन तो करता होगा ना कि हमसे आखिर वो बातचीत कैसे करें।
1: बिल्कुल,
0: तो बातचीत वो हमसे बिल्कुल कर सकती हैं। अगर उन्हें कोई जानकारी हमसे साझा करनी है, कुछ बताना है, तो हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और अगर उन्हें पत्र लिखना है तो हमें लिख सकती हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
2: और हम ये भी बता दें अपने बहनों को कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और अब अपनी बहनों को कहें
0: बहनों राम राम, राम।

0: अभी हमारी महिलाएं सुन रही थी अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो

0: भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
0: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्ट

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। उसी समय में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार लेकर कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

जी दोस्तों, सावन तो आने वाला है, अभी सावन बीता किससे जाएगा, लेकिन मैं भी आज आपके साथ आ गया हूँ। नाम है अरुणेश द्विवेदी और काम है आपका मनोरंजन करना, एक ही फिल्म से कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और अभी जो गाना आपने सुना, अजहू न आए बालमा, इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और सुमन कल्याणपुर ने। बात करें अगर इस फिल्म की, तो सांझ और सवेरा बहुत ही भावुक करने वाली फिल्म है, एक दिल को छू जाने वाली फिल्म है। और इस फिल्म में गुरुदत्त साहब, मीना कुमारी और महमूद ने अभिनय किया है। और इस फिल्म को डायरेक्टर, यानी इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक, वो हैं जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक उस दौर के रहे हैं, और हृषिकेश मुखर्जी उनका नाम है। और अनिल घोष, डीएन मुखर्जी, जगदीश कंवल और ध्रुव चटर्जी ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। शंकर जयकिशन साहब ने संगीत दिया है और 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी क्या है, और इस फिल्म में मीना कुमारी, गुरुदत्त, महमूद साहब और शुभा खोटे का कैसा किरदार है, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

अब प्रकाश का अभिनय किया है और शुभा खोटे ने राधा का किरदार निभाया है। और इस फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो डॉक्टर शंकर चौधरी अपनी विधवा माँ रुक्मणी और छोटी बहन मंजू के साथ बॉम्बे में एक शानदार लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में जी रहे होते हैं। उनकी माँ चाहती है कि उनकी शादी यानी डॉक्टर शंकर चौधरी यानी गुरुदत्त साहब की शादी अंबाला स्थित एडवोकेट मधुसूदन की बेटी माया से हो जाए, भले ही दोनों में से किसी ने उसे देखा न हो। शंकर इस शादी के लिए सहमत भी हो जाता है और शादी हो भी जाती है, लेकिन इसके बाद अचानक दुल्हन जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं शादी की और उसके बाद अचानक वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न आते हैं आपको हम बताएंगे। उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक और प्यारा सा नगमा।

आपको बिल्कुल भी खो नहीं जाना है, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहना है और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत भी कराना है। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं और जो हमें पहली बार

जी से हमारा अनुरोध है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप इस कार्यक्रम में और क्या इंक्लूड करना चाहते हैं और क्या जोड़ना चाहते हैं, आपकी क्या सुझाव है या शिकायत है, कुछ भी वो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। और हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com और हमारे पास आपके मेल आने शुरू भी हो गए हैं। एक ये मेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का, और इन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत फिल्म सांझ और सवेरा की कहानी सुनकर बेहद ही अच्छा लग रहा है और जो आप जानकारी दे रहे हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है। इस फिल्म की कहानी और सारे गीत हम आपके द्वारा सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब इस कहानी के बारे में बात करते हैं कि फिर इस कहानी में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो दुल्हन है यानी मीना कुमारी जी वो अचानक बेहोश हो जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए उनके चचेरे भाई प्रकाश और मधुसूदन आते हैं और इसके बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। अगले दिन वह शंकर के साथ उनके घर जाती हैं और पहली रात वो उसे बताती हैं कि चूंकि वो एक पवित्र उपवास कर रही हैं इसलिए वे किसी भी तरह का जो होता है कि शादी के बाद गोल्डन नाइट यानी जो कहते हैं ना कि सुहाग रात उसको वो नहीं मनाना चाहती हैं। शंकर मान भी जाते हैं और उनके साथ अगले दिन भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं और फिर से शादी करते हैं। इसके बाद क्या होता है इस फिल्म में ये हम आपको बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ और आज की हमारी फिल्म है सांझ और सवेरा। इस फिल्म की कहानी हम आपको इस गाने से पहले बता रहे थे तो आगे बढ़ते हैं। और इस कहानी में एक दिन ये होता है कि शंकर प्रकाश और माया दोनों को खोजने के लिए घर आता है, उन्हें ढूंढता है लेकिन उनका पता नहीं लगा पाता है। और उसके अगले दिन उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला दरअसल मधुसूदन की बेटी नहीं है और हो सकता है कि वो प्रकाश के साथ कहीं भाग गई हो, जो उसका भाई भी नहीं है, प्रेमी भी नहीं है, तो आखिर कौन है। और फिर कुछ इस तरह से इस फिल्म में नाटकीय मोड़ आते हैं, घटनाएं घटती हैं कि दर्शक उनमें से उलझ सा जाता है। और इसी खोज के बाद शंकर और उनके परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि इस फिल्म की जो कहानी का परिणाम है, कंक्लूजन है, वो हम आपको बता दें, नहीं तो फिल्म देखने का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए इस कहानी की जो प्रमुख बातें हैं वो तो हमने बता दिया, लेकिन इस कहानी का परिणाम यानी अंत में इस फिल्म में क्या होता है वो हम आपको नहीं बताने वाले। उसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, क्योंकि 1964 में ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली मीना कुमारी ने एक समर्पित त्याग करने वाली पत्नी का किरदार बेहद ही सरलता, सहजता और भावुकता के साथ निभाया है। और वहीं दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी सांझ और सवेरा। उनका अभिनय भी सदा की तरह बेहद ही प्रभावशाली और गरिमामयी है। इसी बीच आपके कुछ मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। तो एक मैसेज आया है अनिल मोहन पीटीआई संसद मार्ग से, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अनिल मोहन जी। इसके अलावा ओम प्रकाश राय साहब का भी एक मैसेज आया है, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से। और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून, और इस फिल्म के सभी गाने बेहद दिल को छू जाते हैं, आपकी शानदार प्रस्तुति है और हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जी, बहुत बहुत आभार। और आपको भी धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक और मैसेज छत्तीसगढ़ से आया है, जिला बालोद से, देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमा बाई का ये मैसेज आया है। और इसके अलावा रोहित वशिष्ठ का मैसेज आया है, खजाना गेट अमृतसर से। आप सब लोगों के मैं नाम जल्दी जल्दी से ले लेता हूँ। और ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देव शंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली

बी पूजा तामुदिया, राधिका और प्रभा देवी का। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और इन्होंने एक रेडियो श्रोता संघ बना रखा है, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए और आकाशवाणी से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनका आनंद उठाइए और समाचार भी सुनते रहिए। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आकाशवाणी के माध्यम से आपको जानने को मिलता है। और अभी तो हमारी आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा भी पूरी हो चुकी है और ये 90 वर्ष की यात्रा अनवरत रूप से आगे भी जारी रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए और जन जन की वाणी है ये आकाशवाणी और इसके कार्यक्रम सुनते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको इसी फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणीश द्विवेदी के साथ और आपके संदेश लगातार ईमेल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ संदेश और ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, राजस्थान भोपालगढ़ धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार, इनका मैसेज आया है और इन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ की है। इसके अलावा हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम की बहुत ही शानदार प्रस्तुति है आपकी और बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने ये लिखा हुआ है। और दोस्तों एक और गाना मैं आपको इस फिल्म से सुनवाना चाहता हूँ क्योंकि ये टाइटल सॉन्ग है और अच्छी बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अभी अच्छी बात है या नहीं है ये तो हमारे श्रोता बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ना कि समय के साथ चलना होता है और हर एक कार्यक्रम हर एक प्रोग्राम हमारे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। तो अब अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत।

किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी कार्यक्रम में आपके साथ इसी चैनल में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल, दीजिए इजाजत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी उत्ते अपने प्रोग्राम मन की बात विच राष्ट्र नूं संबोधन करदियां देशवासियों नूं गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वर्तन अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अज देश दे नवे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज दे अगले मुखी वजो अपना अहुदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन उत्ते बरामदी महसूल च सोध कीती है। IPL क्रिकेट दे फाइनल च अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा गंभीर गर्मी दे मौसम दरमियान बेहद सावधानी वर्तन अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती है। आकाशवाणी उत्ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच उन्हां ने लोकां नूं घर तों बाहर निकलण तों पहलां वध तों वध पाणी पीण अते सूरज तों बचाव करन लई सुरक्षा मापदंड अपनाउण दी अपील कीती है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना से शरबत पीना गर्मी तो राहत पाने लाभदायक नहीं। उन्होंने कहा कि ये पीने वाले पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और पीढ़ियां दे तजर्बे नूं दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने काशी दे लंगड़ा, महाराष्ट्र दे अल्फांसो, गुजरात दे केसर अते पछमी बंगाल दे हिमसागर अंब बारे गल करदिया कहा कि हर इलाके दे अंब दा स्वाद वखरा हुंदा है। श्री मोदी ने अंब दी खेती च शामिल किसानां दे योगदान दी भी शलाघा कीती। उन्होंने कहा कि अंब दी यात्रा हुण पिंड तों

0: इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तस्करा किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग खास तौर पर इस बारे में जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: आम का तस्करा करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वजीर आजम ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफर अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुंच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस वीन शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इक्तदारे आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज़े फिक्र और कार्रवाई में इस तरह से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तई गैर मामूली लगन के लिए उन्हें

0: इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जुनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज जुनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गई जहां ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शुएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय मुसल्ला अफवाज मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country, highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as the new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. Informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के महार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों

0: बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले

0: 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक

0: कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दरअसल 35 आकाशवाणी दिल्ली का ना नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 का ना प्रचुपत भी प्रोग्राम उन लग याने नट पिन मीडियम वेव दोन एफएम के दिवा आकाशवाणी करकिलिन वास्पोतु सोतनीस ने मिनट समझो संसुक कसता शीना प्रोग्राम पुनर प्रचुकत न्यान मजद प्रोग्राम प्रचुकन पेन एहसान अली।

अस्सलाम वालेकुम सशारी आकाशवाणी करगिलो स्टूडियो जो मोहनस एहसान अली सशारी आज को प्रोग्राम मुठो थियोनो जो में जे आज को प्रोग्राम ओछिर थोड़क फारियोनो चमाठिम सशारी आज को प्रोग्राम ओछिर अनिजेली जहानी आज को प्रोग्राम जा बुड़ जो में जे बेसु शिणा लोक अदपो बार अर्चा का मोर इथुन सशारी नुखेण मजा बेसु थोरे आबिदा खानमी शोंगजा एक मिष्टि नातिक पर जुरियोन के चमाठुन सशारुई से जो पतो असोय साथ एक मनाचिक मिशार बहनो तो से साथ गा मोर कलिक थुन सशारुई रजना की मनुरी इफ्तिदा अफ्रीके जो बिलियनी मनुरो अनि दुनिया तिजा ओई अच्छी बस थे पतो रसे मुछोट बदे मुश्किला तैयारी मेजे मेजे रसी जंगली जानवर पटेगा कटो सहारा गिण्यो दलबो दलबो जहनी सलाहियत आली हिसाब जा रसी जिंदगी आसान थ्यों गौ सरारुई रजना की आई हिसाब जा रसी हुरी हुरी दिशो जा खजी डूकुर पयोनो साथ साथ बिरदी क्रमियोनो का शुरू था नी हुरी हुरी दिशो जा खजी जाको जा एक डलुक सिनियो छुपट ब्योनो बोदे पसंद असिलो अनु डाले जा जक्षेक यूरोप थेन दिशो जगे बेटे अनि जाकोट पन्यो इंडो यूरोपियन थे नोम दिगे सरसारुई नि जाको जो बड़ा एक डलोक ईरान थे निक दिशी वरी खजी गाँव तो से दिशी जे बेटिक जाकोरे इंडो ईरानियन थे नोम दिगे नि जाक ना दोगा खजी डांगे शाये छीश गब्रा के तारे लद्दाख तिब्बत के चीन फर्श दिशो जा वजी बेटे नि जाक ट्रेक वादी द्रासो इलाके जगह हो बेटे रेनोट डर थे नोम शातो सरसारुई अरे चकेस तो दशमान सूरज ना की द्रास थेनिक लफस प्रोणो खेण जा दरदास यानी दरत बेनिक जको दिश थे नोम देना ले थी पतिनियो नू लफस मॉडिफाई वो द्रास पाईजी गाओ नर बेनिक जकसु अशगा शना थे ना निजक हिजर द्रासो इलाके जस्तानुश बल्कि दाची गाम रखबरा छतरगुल चंद्रकोट जम्मू द हनु गरकुन वगैरह इलाकों जगह भी ना सरजारुई शिणा लोक अतबर जो मुश्किल थे गेस तो बुट जुमी जे इन्हें शिणा प्रोणी गाए शिलोगे दलीले जरबुल मिसाली का महावारे का नदे मिशार हने शिणा गायो कोई चोल हनु रुगा अकी एक बोदे सुरोमुक एलो सरजारुई रजना की शिणा बाशे जो कोई गाए नाले शिणा चोल जो कोई गाए नाले रदे चना गाये थू एक गाय एक दिन नी गाय मेजू के जक्सु गम यानी हीशो खेण जे दिन थे रजना

0: अनि गाए देख मनु रे साथ साथ कुंडे निगा निगाए परुजी रे नले थी म्यूजिक जक सरजारुई सिस जो पतो छिलो शे गाए थ्यू गाए तुक ए नले सरजारुई नि गायो जा छिलो ट कोई हनी कजो जगे नि गाए दियोनु पे नले थे रजना सरजारुई छिलो ट हिजर अनि छिले छे गायो जा ट्रकी दरबट्यो गाय गालियो गाय थ्यू हुरी हुरी गाए गए नले नि गाए दियोनु छिलो ट बोदे जरूरी असली कनु का शिलोट करे निगाय जो एक गाय की यात नुश या हुरु फिग्रेसी फत था पतोरे तो हलाले फत ने थे नले सर रारुई से जो साथ साथ रजना की असनी कोई मेजु के जा कसले निसु शिलोगे गे दे नले थी नि शिलोगे जा दादु गे ददी शिलो बुड़ु शेर गवी शिलो ते हुरी हुरी शिलोगे असले सर रारुई अशा सोई साथ मस मेज गे चागे थे गास की मनाचिक मिशार बहानु अनु मनाचे साथ थोगा डोकिरियो नो चमार थेम बुड़ जो मेजा सो प्रोग्राम में जा मिशार बोनो कार्यो जो डॉक्टर या साहब तो टही हो गुड म्यार की जो का सलाम थोमस
1: शुक्रिया एहसान साहब
0: जो डॉक्टर या साहब के थी तो अश असोई जो चके गाने पूरी दुनिया तेजा वोल टबाको दे थे मने बुझ तो अनुदेश मनियो नो बुड़ जो मेजे मकसद जो खानोरे सोबार अच्छा गत जो
1: बुढ़ जावले तो मस ऑल इंडिया रेडियो शुक्रगुजार हूँ उसके सुनो जो मुआने अड़ेता अश मैं मुश्किल थोड़ तो अश पूरा दुनिया ते जे नो टबैको डे मनाई थी हने तो सही हिसाब जे बैसुगो आने लद्दाख यूटी जी का नो टबैको डे अश बैसु आने मनाई थी हाँ तो से नो टबैको डे वो मकसद आहने की तबाकू कानों का बथन चाहे सिगरेट बथन खाने बथन नाश बथन या तम्बाकू रोई बथन से इस्तेमाल थोनो असनो सियातिर मुजिर हनी तो आसो बारे जे आओ अचाक मुजिर हनो सो इस्तेमाल नहीं थोना जी थे या से सो बारे जे जोग जोग पालसी अनि रेस जे हिंदुस्तान या असनो लद्दाख यूटी जी याज ने से सो बारे जे गा असने और दुमोगो से ट्रमोगे आही कि अनु सबसे जो है इजी मतलब प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है ना असर कि अनु अगर स्मोकिंग थोनो सिगरेट तम्बाकू अगर बंद थे पतोरे तो बहुत मतलब दुनिया अनि हिंदुस्तान या असने इलाके जे पॉपुलेशन जो अनि रोग को मेरी जी से बुढ़ो बचाई थो निकारियो एक आसान तरीका हूँ अगर सिसो कार्यो भाई से अवेयरनेस थो निकारियो अश अनु नो टबैको डे सेलिब्रेट थो हाँ जो या मनाई थो हाँ
0: जो डॉक्टर या साहब अनु तम्बाकू कोई हनु जो असनी सियातियो कार्यो मुजीर के हनु रे सोबार का मुरकल थे
1: तम्बाकू रो हनु के रिस किस्म किस्म केमिकल है ना रो तम्बाकू जो चाहे सो तम्बाकू बथन सिगरेट बथन खानी बथन नसवार बथन या गुटखा थे इस्तेमाल थे ना से बुड एक किस्म कोबिल एक तम्बाकू स्मोकिंग जैसे जो फूश हुप थे अली पीने का नो दुमोगो तम्बाकू दुम बगैर एनो के नास खानी है ना नास है ना गुटखा है ना सो आती थे विदाउट स्मोकिंग थे ना सर तो आओ आज से मुजिर हनो के जैसे जो आज तक टकेगा ने कि कम से कम सबसे जो इम्पोर्टेंट आज से जो एक किस्म को केमिकल के अनुसार सर निकोटीन थे ना निकोटीन एक खतरनाक रोग बिल के उससे से एडिक्शन बोनो रे बनी खासकर असने जाको जो किसी के इस्तेमाल था सम तो स्मोकिंग थे या सिगरेट पियोनो तम्बाकू पियोनो से सर एडिक्शन बोनी से बगैर मोते के केमिकल है ना से जी से कैंसर थैरियो निकारियो या बाकी के कनू के इंसानों जिसमें जो है कैंसर थैरियो निकारियो आसे केमिकली हने से केमिकल हो आए सो लाई खतरा बनी आसे कार्यो बने सो आसे जो बचाई वो निकारियो कोशिश होना आज
0: अच्छा जो डॉक्टर साहब अनु तम्बाकू कोई हनु जैसो एक मनोरोग एडिक्शन या आदत जो जेल जो बने जो हिसाब के जो
1: उसमें तो अवले का रजी गास की तम्बाकू जे निकोटीन थी एक केमिकल के नो सो केमिकल उस सो रे हने के खासियत हने के सो इंसान रे एडिक्शन थे रनो एडिक्शन थे रो पता रो कोई एक मानो सो 1 लाख 2 लाख चौ लाख अगर से सिगरेट पियाओ हफ्ता दे जी मोज सिगरेट पियाओ अवले तो शौकियाना तौर पर पहने चुण बाल मिले आम तौर पर या स्कूल बाल मिले सो पहना था उससे जो बने कि दाल बदाल बसे सो बॉडी जे निकोटीन बढ़ाई बनो निकोटीन बढ़ाई मुँह तो निकोटीन जैसे एडिक्शन वो तो सर निकोटीन जब तक जैसी बॉडी जैसे लेवल एक मेंटेन ने भी या से लेवल बराबर ने भी तब तक जैसे जैसो सिगरेट और तलब लगाई बोनी तब जैसे बराबर जो है सिगरेट मंगियोन हूँ से सिगरेट गे चोरी के थे गे प्योन हूँ गोर रो बच्चों ने पछरी प्योन हूँ माशोर ने पछरी प्योन हूँ सर उगर रेक पैसे कमी बिल रेक बिल पा तो रो बाकी गलत चीज गए थे रो सुकनी गए थे मतलब गलत सोसाइटी जी गए रहे थे सिगरेट प्योन की कोशिश चुनू तो आज से जैसो सबसे इम्पोर्टेंट आज से जो है कि निकोटीन थी एक रो के नो केमिकल के नो से जो जनर एडिक्शन बनी से जैसे बार बार सिगरेट रे पियोनी कार्यो रे बनी उसके बगैर से बगैर आद के चमुते केमिकल में अवले कर जैसे जैसे

0: कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे टार थियोनेट, तारकोल बेचते हो रे,
1: जो
0: तारकोल टार बोलते हैं, वो होता है उसमें, या सब अगर अच्छा केटून थियोनो, एसीटोन थियोनो, एल्डिहाइड्स होते हैं, नाइट्रोसोएमाइड्स होते हैं, मानो कार्बन मोनोऑक्साइड है नो, तो सब बुढ़े जो है खतरनाक केमिकल बिल से असनो बाढ़ जीगे हीव जीगे ले लीजिए से जो ना कि कैंसर के थारना, बाकी ही वो रोगी के थारना, बाढ़ो रोगी के थारना, मूत्र रोगी के थारना से अगर शुगर है खूँ कैसे एक डायबिटीज खाने या अने ब्लड प्रेशर रे तकलीफ खानी या ही वो तकलीफ है सब बुढ़ी बढ़ाई बोनी है से कम बोनी जो या सब बुढ़ी का खतरा भी नहीं कि सब मनोर फिर रोग थोशोनो सब बुढ़ी जो
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक खोज ने अनि गहनी की अनु कोई तमा को हनु रो सो मनु
0: बिल्कुल
1: रे जुग जुग डिजीज पैदा थे बुझू या रे सो डिमट जुग जुग रोगी बिना।
0: रोगी में तो अवले रजास के अनुसो रोग सबसे इम्पोर्टेंट रोग रसो हनु की लंग कैंसर थे रहनो, बहुत कैंसर थे रहनो,
1: बारो कैंसर
0: बाजो कैंसर बेनी या सिगरेट पियनेक्स हो, अगर दुमो को खैनी थे ना नसवार थे ना या गुटका या ना से नर ओ अनि रेस हो जिसने गम्स मसोड़ों का कैंसर, मुंह कैंसर या गले का कैंसर आए बुढ़िया बने जो या से बगैर के ही वो रोग रसो बढ़ाई जा रहा ही वो कह तो रसो कह निकोटिन या बाकी मुत केमिकल या ना से सो ब्लड प्रेशर लाओ तेज थे बढ़ाई थे रहना या ही वो धड़कन लाए तेज थे रहना से जगह ही उदाल बदल वो कमजोर बनो ही वो नलिए बुलाक बनो खतरा बेनी या बाढ़ जो आरोग्य तो रसो इन्फेक्शन थे नो इन्फेक्शन वो तो आरोग्य तो खूज ओ शीश ओ सांस बंद बो से जगह रस रे हाइड़ी खजी रे बोई सीओपीडी बनी सा तो बगैर दाल बदल अस्थमा बनी अस्थमा जो दाल बदल बोले सिर्फ पाँच 10 साल 15 साल 20 साल रो सिगरेट पियूँ गाँव पतो रो तो बाद में थे से दाल बदल बोले सिर लंग कैंसर थे ही वो रे बोए या मुंह का कैंसर या रेसो गम का कैंसर से बुढ़े बोए तो दाल बदल बोए इंसान जो है रसो रोग सो जी खत्म छे मनोरी अगर इस्तेमाल था कि
1: वो जो डॉक्टर साहब असों सो अश्वर्यो चके बुझन उसकी नू कोई नशा हनो ने बुट जो लाई
0: बिल्कुल
1: असने कोई स्कूल बाल मलाए हने
0: बिल्कुल
1: या कोई असने यंग जनरेशन हनी से नो जब इन सो चके बुझन उस तो निसो बार आर तो सुप्रजन जो
0: आसो बारे जाए ही जो कि स्कूल और बाल मले थे या यंग जो पॉपुलेशन है निसे उनमें उस नर जो कहने की सनो जे आ गलत चीज़ बोनो या गलत स्मोकिंग थे, शराब थे, बाकी की चीज़ बोनी कर रहे या ड्रग एडिक्शन बोनो जो ज़्यादा मतलब प्रोन माना कि लोग मो को आ चीज़ बोनी ही क्योंकि गलत सोसाइटी जे बैठे तो गलत दिशा जी गए तो गलत जकोस नाला बैठे तो आ चीज़ जल्दी कैसे तो एक दूसरे एक कोर पछरियो नहीं कर रहे दिखावा थे कभी नहीं दमोगो तो बाल मलो जे समझ गए इन उसके अनुसो ये तो मोरे लोस्ट बाड़ो बोए या फिर बारिश दाई जो पोष मोरे नुकसान छोड़ो तो उसे को पता ही नहीं आए साहब जे या कोते बाल मलो रहे जो ने परेशानी है रे सब क्यों की या गोर रोगी परेशानी है जहनी तौर पर लाए नहीं से चीज़ें कम छोनी कार्यो वगैरह से ये आए गलत सोसाइटी जगह फंसाई बना तो से जो चुन बाल मिले स्कूल बाल मिले या यानी यंग जो मतलब बाल हने से बूढ़े जो बना कि आसे फंसाई बना तो आसे रे जल्दी से रे मतलब कोई सो ट्रेक सो शोकिया ना तोड़ के पियाना ट्रेक सो दोस्त इस थे ना पी थी जगह बोनिश आशे 1 लाख प्या तो उस जगह बोनिश थे यार दोस्त ना मिलाए हुए तो से वो तो आसे जनरल लाई चांस है कि रे एकदम आसे इंडल्ज बोनो कारीगर सिगरेट रे से तमाक जे
1: वो जो डॉक्टर साहब बहुत मिस्ट रहेगा अश अनु खेण जो कोई असने शुदा रहा नहीं रेसो या तो सिगरेट या कुल्ली फर्श मुत मुत नशे
0: बिल्कुल
1: पशिरियों नु कार्यो या फैशन दस्ते पिना मगम नु रोग रोग सु पतो ग मनु रे कभी फत्थी नुश
0: फादने थी बिल्कुल
1: रोस पतो रेसी हवास भी लिख रोस फत्थी अनु रोग जुगजा के थे अनु नशा फत्थी थे कचाक चमा ठाव तो गर नू नशा फाथ्यों नू बोध रसो ड्रेसर मुश्किल बेनी हाँ तो बोध मिष्टी रजीगा खास कर आसो जो केस तो स्कूलो बाल मुलाज बेस अक्सर पशुनुस स्कूलो वर्दी बनी रसो रोटो जा या स्कूलो बिल्डिंगे पातो रे या मोती मोती दिशो जा अताई सिगरेट रे पी बुझना आसो ने आवाज ही कि असने कोई दुकानदार रिहाने साथ साथ असने कोई जा खाने ड्रेसुगा अता बाल मुलाय पशे पौनगी सिगरेट पियने रे पियने तो सेनोट गरे सुबया थिन की थो सिगरेट इन्हें प्यार रे सो नुकसान जोग जो खानो तो से सो बार आर ड्रेस सुगा रजी अवेयरनेस देनो बहुत जरूरी है नी। जो डॉक्टर साहब मस एक खोज ने अनी थिम की मैं जे अनी सिगरेट फात थियो नो मैं जे स्टेज जे फात थियो नो रे सो जोग फायदा दस्ती जो
0: फायदा आनो हने के अगर कोई गए चूण बाल मिले हने या स्कूलों बाल मिले हने या जवान यसने हने को तो भाई अगर से स्मोकिंग थे ना या सिगरेट तमाकू पीना तो फाथ्यो ना बेहतर बिल के

0: तो लोक फते हिसाबे अगर ऐसे कम उम्रे जी प्यानो ना समझे जी प्यानो बरेश दूर ट्रक प्यानो ट्रे चार एक पोशाक अगर प्यानो पतरो तो अगर दल थे उस वक्त अगर 40 साल ने बोचते मैं जो मुझे दुब्य बरेशो ने बोचते मैं जो मुझे अगर ऐसे फत्ता हो पतरो जैसी मुठो गया था पा जब उम्र बढ़ाई बिली हिसाबे जैसे रे फायदा बोनी ही कहते तो सत्ता तक बॉडी सो जुखना ये ग्रेसो इम्यून सिस्टम फिर डेवलप बोन हूँ कैंसर बोनो चांस कम बोन ही ब्लड प्रेशर रोग चांस कम बोन हूँ ही वो रोगो चांस कम बोन हाँ तो आज बेहतर भी नहीं कि बाल मलो रे अगर कभी से सिगरेट पे ना लो को सिगरेट फाथ होना जी क्योंकि हम गलत नशा बिल गलत नशे जी इंडल ने बोना जी जैसे अकनी गोरो परेशानी का ये सोशो इकोनॉमिक परेशानी हनी या बाकी का रे हनी लो से बीमार बिल तो सो इलाज रे पैसे हने या चीज़ बुढ़ जो बचाई वो निकालो अगर जवान हो जो अक्सर जो फाते रहे थे आ गलत चीज़ जिन्हें इंडल्ज बिल पत्र तो फायदा हनी कैंसर 40 साल 50 साल के बोई था अगर कैसे कैंसर बेली पातो रहे सर लो से कम उम्र जी ही सो मेरी जोन हूँ उसके बारे में अगर एक मनोर सिगरेट नहीं पिया सो आराम से रेसनी जिंदगी जैसे खू जो नुश रे बोन नुश शिव रोग बोन नुश बाड़ो रोगी बोन नुश कैंसर बोन नुश से बुढ़ी ने बिली पातो रेसनी उम्र जारी जराई आराम से जिंदगी गुजराई थोन हूँ रेसने गोरो बच्चे उसने आराम में बियोन ही रेसने गोरो बच्चे जी सो बोझ ने बिलो रेसने बाल मुलो अगर ठीक ख्याल से छोड़ाऊ से बुढ़ी बोनी है ये चीज़ें और जो है परेशानी रेसी रहता बीमार बिल तो उसे सो खर्चा ये सब चीज़ें जो है सिर्फ बचाई बोनी है जो है अगर रे बिले पतो रहे तो
1: वो जो डॉक्टर साहब बदे सी रजीगा के छु तो नो रोग सो पतो रेगा हिजर मनोरचा अकी पी एक मनोरचा नुकसान थी निश बल्कि पूरा से सो गोर रो बची परेशान बिना साथ साथ अगर रिसो नशा मुते कोई गोर रो राख हूँ सजे खी से सिर गदी तो पतोर तो से सिर नुकसान वो बुझू यानी कि रजी गेस तो रेसे साथ साथ पूरा गोर रो बचर गोरो सो नुकसान बोई बुझू
0: बिल्कुल
1: जो डॉक्टर साहब एक खोज ने कहानी कही कि रेसो फत थोनो जे एक मेथड एक जे एक तरीका खानो दा
0: फाथ्यो नो आय हनी कि सिगरेट फाथ्यो नि कार्यो मतलब अगर को तो चुन बाल में जसने पे ना अचानक परेशानी निश वो मतलब सिगरेट फाथ्यो नि कोशिश थ्यो नो जो कि आई सुजी सोसाइटी में जाके ड्रेस कनी सोसाइटी जी गे भी सिगरेट पे ना से सोसाइटी जी ने ये सादा सनो जो बचाई वो नि कोशिश थ्यो ना जी या चलो मुझसे आज दे जी हफ्ता सिगरेट नहीं पियम था अगर डालते डालते काम आई थी अगर एक दिन भी अगर स्मोकिंग फ्री से लाइफ खाती पातो रहे तो वो बेस्ट माना जाता है कि यहाँ की सिगरेट पियोनो जो तो आज से बेहतर भी नहीं कि रोज सिगरेट नहीं पियोनो डालते डालते फत थोनो ता तो स्टेप बाय स्टेप रे काम थोनो अगर साधो गमा रे सर परेशानी लाए भी लिया अगर लाए रे विड्रॉल सिंड्रोम थाने कि अगर सिगरेट फाँचियो तो पानी सो बंदे रे सिगरेट और तालाब लगाई वो सो सरमा सिगरेट और रोनो मा कनी के सूरत जे अगर से किस मुझे एक बे नहीं पातो रो तो डॉक्टर ले को तासने यानी कारगी लेगा हमसेगा खार दिसी जे ड्रग एडिक्शन सेंट्री हने टबैको डी एडिक्शन सेंट्री हने सेनो जी गे डॉक्टर्स नाला काउंसलर्स नाला गे मिलाई बोना जी से सोचता तो सही हिसाब डालते इलाज थी रात तो जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग थी आप हथियारों की कोशिश थे ना जो है
1: डॉक्टर साहब आने बच्चों का जो रोल लेके उन्होंने सिगरेट
0: बच्चों बिल्कुल रोल है नो क्योंकि बच्चे सो अगर सो, सो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना जी बच्चे सो वगैरह से रे रे से जे रे नहीं थोना जी मजाक ने उड़ाई थोना जी विड्रॉल सिंड्रोम एन चांस बेना या कभी रे रो बेनो मतलब बीमार बिल तो रे बिल तो या फिर सिगरेट पियो नहीं कर फिर रे था पतो रे से जो क्यों ना जो कि बिल्कुल जैसे हाँ जितने थे रहने थे बिल्कुल जैसे जे शरारत ने थे जैसे नाला रहने थे दाल थे समझाई थारी दिलासा दे हिम्मत दे जैसे बिल्कुल जो थारी भरोसा थारी तरह से बिल्कुल आप हत्या नहीं करो कोशिश होना जी चाहे जैसे गोरो बच्चे बतान जैसे साथी बतान या अस्पताल है डॉक्टर है ना या पर डी एडिक्शन सेंटर जो काउंसलरी है ना से बुढ़ो सिंधाला एक बॉय तो जैसे दालते दालते आदिति जो हत्या बुढ़ो रोल है ना जो है
1: वो जो डॉक्टर साहब बोले सी रजा गो रजगा एक दुख बची बुढ़े रोराट बोनोगे सी भी निश
0: जी
1: एक
0: जी
1: दुख
0: बिल्कुल
1: बची अताक बोना जो कोई सु एक बालक सिगरेट पी एक बालक के दोस्त फर्स्टे ट्रके बुझी तो सो सुरे सिर पर जा रही के थी तो अक्सर बेस गो रज पशु उसकी सिगरेट पीने बाल मुलाय मामा ले चुकुटे ना या रारो से चुकुटे ना सो आई रोज रोस बड़ा दूध होशी पिए ना
0: बिल्कुल
1: तो अताने बोना जो राख हूँ तो रुस दोस्त एक फर्स्ट पर जुड़ियो ना जूं कना ही थे रेसरे सिक्रेट फातियो नहीं कना ही थे रुस रेसी मदद थी जोग जोग नुकसान ही हने पतोर जोग जोग फायदे हने तो रे बड़ो बारार रुसु रजीब हो जुनो बहुत ज़रूरी हनी अच्छा जो डॉक्टर साहब एक खोजने का अनि ही कि कोई असनी हुकूमत ही रेसु बाल मुलाय और सिक्रेट फत्यो नु कार्यो या कोई आम मनोरुखानो रेस

0: भेजे या अनि स्कूलो रहेसे बाल मलोरे अनि ट्रे प्लेटफार्म अता हने कि अगर इन अनि प्लेटफार्मो जो अगर ठीक थे असो जो अगर कैंपेन थी इस बतौर तो इनशाला मतलब आने वाले एक दो सालों जे पाँच सालों जे दाल बदल वो अनि सिगरेटे कम बोनी है खुद ब खुद नसवार कम बोनू खैनी कम बोनू फिर जो कनेगा दुकानदारी हजरा सुक्रिन ना चूण बाल मलोर सिगरेट तम्बाकू नि जोना जी कैसे चूण बाल मलोर से गलत इस्तेमाल बनी से बेचारे चूण जी ही सिगरेट तम्बाकू पे तो आने वाली जिंदगी बुढ़ी खराब मिली से नहीं तो से एक इम्पोर्टेंट रोल लिखनो तो आए बुढ़ी मिलाई बो अगर बे बुढ़ी जो अगर मिलाई वो कदम उठाई थी इस पतोर तो इनशाला एक अचाक बड़ रेक निबल जुए सर
1: जो डॉक्टर साहब प्रोग्राम छुपट फेनो तो एक आखिरी खोज निकतू जो थे कि बुढ़ जो बुजुर्ग तुसु असने कोई माँ माले हनी या कोई टीचर सने जनर जो पैगाम एक दबुजू
0: पैगाम आई है जो मैं को तरह रजा से चीज मतलब जैसे कि तम्बाकू पीऊँ तो सिगरेट पीऊँ तो कैंसर बनी या अच्छा सो कैंसर भी लोग मनो ससर तो तकलीफ बिली बिली लेकिन गोर इकोनॉमिक स्टेटस से सर अच्छा खर्चा बेनी तगोर एक से सर अच्छो निकाल का जी तसो जिंदगी भर आप आई वो पतो से सर एक रेख छोनो बार मनोरो काजी तो से बुड़ी मिलाई वो तो से सो गो रो माहौल से सो गो रो हालात तंग मोनी ही बिल्कुल तंग वो तो इस आ चीज जो बचाई वो नहीं करियो चुन बाल मुलो करियो या जवान हाथों का मेहरबानी से सो बिल्कुल सिगरेट तमाकू खैनी नसवार बीड़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं छोना जी आज के डेट पे ये चीज बुढ़े ला मुजिर हने ला नुकसान देहने या तेरे ला नुकसान देहने क्योंकि आने उन्हीं एक जिंदगी माँ बद से बदतर बोनी है अगर अल्लाह ताला सो बचाई थी अगर कैसे अगर कैंसर है क्या जी एक बिली पतोर है और दुमोगो जी आए ही कि आज अगर चेक जवानी सो या बाल मिले सिगरेट पियाना पतोरे से सो गे डी एडिक्शन सेंटर हने असोईली कारगिल हने हॉस्पिटल है टबैको डी एडिक्शन सेंटर सादे गे रुजू थे सेनो जो बाजिबता काउंसलिंग थ्यारी सेनो ची दवाई की बिल्कुल आफत थी कोशिश थी ना जी तिमोगो आए ही कि पुलिस वालों लिगा टबैको डी एडिक्शन सेंटर हनो सेनो लिगे रे थोना जी से सो बिल्कुल डी एडिक्शन के थारना से साइकोलॉजिकल सपोर्ट के देना से बगैर का हस्पताल जी का इस डी एडिक्शन सेंटर हने साइकोलॉजिकल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट अगर फाइनेंशियल बिली बात और फाइनेंशियल सपोर्ट के थोनो तैयार हने को तो बड़े बड़े एनजीओ जी ग्रुप देना तो आप उड़ना एक बोय अनि जो वबाई बीमारी स्मोकिंग की वजह से तम्बाकू की वजह से अनु असनो माहौल असनो समाज हनी से अनि से खत्म थोनी कोशिश थोना जी अनि से सबसे रोल मेन जो है असने जवानों जी लाओ हनो कैसे तो जवानों जी अगर अनि को तो वक्त रहते हुए अगर सुनो सिगरेट फत्य पतो रहे आने वाली जिंदगी उनकी खुश खुशहाल हो जाएगी इनशाला
1: या जो डॉक्टर साहब थोड़ा सो प्रोग्राम में कर बड़ा लाखी वो गुड बिहार की जो थोड़ा की तू आइंदा का से प्रोग्राम हो जाए मिशार बबू जी या सचारू दिया तुम्हारी इजाजत आज को प्रोग्राम अनिजफा सुन वसलाम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगरों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मारुफ मौसीकार अनिल विश्वास के यौम वफात के हवाले से जनाब शरद दत्त का तहरीर करदा एक खसूसी फीचर लाफानी तेरी नग में लाफानी तेरी कहानी। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं अब

विशाल, तेजस्वी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक वीडियो के बारे में भी बात की जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचा लिया गया। जनरल मोदी ने इस बात का तस्करा किया कि नमामि

जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सुब्रमण्यन ने कहा कि अंदाजे फिक्र और कार्रवाई में इख्तला से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज बैरियर के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर पेचीदा गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया सलाहियत बढ़ाने और जदीद तर्ज पर आगे बढ़ने की क्षमता कामजर है। एडमिरल स्वामीनाथन ने यकीन दिलाया कि उनकी अवलीन तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तैयारी और मुकाबला करने की सलाहियत के आला तरीन मैारत बरकरार रखे जाए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तहत गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुल्क में भारत ने छतों पर एक ही दिन में सबसे ज्यादा 15,000 शमसी पैनल नष्ट करने का रिकॉर्ड कायम किया है। भारत ने इस माह की 29 तारीख को ये कामयाबी हासिल की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जोशी ने बताया कि इस कामयाबी में महाराष्ट्र का बड़ा रोल रहा। उसने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,700 रूफ टॉप शमसी पैनल कायम किए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तरह गुजरात के बाद महाराष्ट्र मुल्क में ऐसी दूसरी रियासत बन गई है जो 6 लाख से ज्यादा रूफ टॉप शमसी पैनल नष्ट कर चुकी है। जम्मू डिवीजन के मौसम गर्मा के जोन में आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है जो 1 जून से 15 जुलाई तक होगी। जम्मू कश्मीर की तालीम सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईटू ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होने और तलबा और तदरीसी अमले की खैरवाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियाई बिजली प्लांट की टर्बाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली है कि दिन में टर्बाइन इमारत को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिससे प्लांट की एक दीवार में मुबैना तौर पर शिगाव पड़ गया। एजेंसी ने कहा कि मौके पर मौजूद उसकी टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए अहाते में दाखिल होने की दरखास्त की। भारत और नेपाल ने आज नेपाल के सूबे गंडकी के जिला मनांग की मैसोन देही बल्दिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत तकरीबन 5,60,00,000 नेपाली रुपए फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के नायब सरबराह डॉक्टर राकेश पांडे और नेसोन देही बल्दिया के चेयरमैन धान बहादुर गुरुंग ने मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे से इलाके में सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी और मकामी आबादी को मयारी तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ अहमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई का एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। क्रिकेट में आज IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम

Şuraya onarmak kafi mi?

उसी की सभी फिल्मों का जब जब तस्करा होगा तब तब एक फिल्म का नाम जरूर आएगा और वो फिल्म थी पहली नजर, जिसमें एक तरह तौर पर मुकेश ने अपनी आवाज में एक नगमा गाया था जिसे सुनकर केएल सहगल ने कहा था कि ये आवाज बहुत मशहूर होगी, बहुत नुमाया होगी।

सभा फिर अनी किया।

this last.

पश्चिम बंगाल के कस्बे बरिसाल में 7 जुलाई सन 1914 को हुई।

को सौंपा गया। दरअसल ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर शोहरत दिलाई। इस फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती महबूब से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। अनिल और महबूब की इस दोस्ती ने कुछ बेहद यादगार फिल्में नाजरीन को दी। इनमें फिल्म थी औरत, जिसकी बुनियाद में

0: किया करता है। कहने का मतलब ये कि रोटी के साथ में मेरा नाता सिर्फ नशे के हिस्से में मैं उससे भी खत्म हो गया। वो ऐसे कि उस सब टाटा के जो लोग थे वो लोग फिनांस कर रहे थे और उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ किस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ दो और दो चार नहीं होते, समझे? तो कहने लगे कि बस बंद करो इसे। मेरे में वो कॉन्फिडेंस था, मुझे भी इस तरह का कॉन्फिडेंस आ ही गया था, सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फिर मैंने ये सोच के मैंने उसे कहा, ये मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को, ये सोच के मैंने उसे कहा था कि मुझे एक नौकरी मिल रही है, जब तक तू पिक्चर शुरू नहीं करे तब तक मुझे यहाँ पे जो पिक्चर बनाने दे, उसमें क्या होगा सबके घर में चूल्हा जलेगा, क्योंकि मेरे पास भी क्या है, मैं आज मैरिज मैनेज करता हूँ, तो मुझे डर लग गया कि मैं फिर अपने अपने घर को क्या चलाऊंगा। तो मेरी घर पर चुप हो गया और फिर हंसते हंसते हंसते कहा कि ठीक है तू ज्यादा काम कर ले, मतलब तू जिस दिन बुलाएगा और शॉर्ट के अगर गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं गाना छोड़ के चलाऊंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ, कभी कोई बात नहीं तू चला जा।
1: सन 1942 में अनिल विश्वास बॉम्बे टाकीज आ गए। ये कंपनी उस वक्त बसंत फिल्म की तैयारी कर रही थी। अनिल विश्वास ने इसके नगमों को दिल अफरोज धुनों में ढाला। पेश है एक नगमा।

qbila qalqiya kela.

एक सदाबहार दो गाना है, जीवन सपना टूट गया। सामने को बता दें कि अनिल विश्वास ने ये गाना किसी और फिल्म के लिए सैगल और नूरजहां को जहन में रखकर तैयार किया था, लेकिन किन्नी वजूहात

विश्वास के म्यूजिक डायरेक्शन में

नाम से अपनी फिल्म कंपनी कायम की, जिसके बैनर तले 5 फिल्में बनाई गई। इनमें फिल्म हमदर्द है, जिसे उनके बेमिसाल संगीत के लिए आज 60 साल बाद भी याद किया जाता है। इसके एक गाने में उन्होंने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें लेकर बारहमासे का खूबसूरत इस्तेमाल किया था। संगीत की बुनियाद पर तैयार किया गया, मगर हिंदी में भी उन्होंने वारिस फिल्म के लिए

के धुन सवार थी और उन्होंने राजवंशी प्रोडक्शंस के बैनर से छोटी छोटी बातें बनाई, तो जाहिर है कि उसमें म्यूजिक

सेम ये थी। इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में।

الموسيقى أعرف.

week.

साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं।

생각합니다.

0: से इत्तेफाक कर लिया है जिसमें उसे एटमी हथियार तैयार करने या हासिल करने से रोकने की बात कही गई है। भारत और नेपाल ने आज नेपाल के सूबा गंडकी के जिला मनांग की नेसन दीही बल्दिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत 5,60,00,000 नेपाली रूपए फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने के नायब सरबराह डॉक्टर राकेश पांडे और नेसन देही बल्दिया के चेयरमैन धन बहादुर गुरुंग ने मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर बिजली प्लांट की टर्बाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तशवीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली कि दिन में टर्बाइन इमारत को ड्रोन के हमले का निशाना बनाया गया जिससे प्लांट की एक दीवार में मुबैना तौर पर शिकाफ पड़ गया। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तहत बेदारी पैदा करना है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। इससे पहले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की जोड़ी को 21-18 से हराया था। क्रिकेट में आज IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खवातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की ताबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान अफवाज मुल्क के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1,71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामीन, अभी तक आप हमारे नशरियात आकाशवाणी को उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मेरे में पर आकाशवाणी करगिल है। अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मौजूदा मीटर्स के अलावा मीडियम में 1584 किलो हर्ट्स, मीडियम में 684 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार

zirang azir set diana tsukhla mi masla di ja khone anuk lokso ju sun sang thung mar go sha sin zirang zer basong gawang am panna chash sing sing darba chuskrul bel panna panakam nirmor sambram kokum dana solkadi drese i hoten gaons gastri ti lokso mal san sang anuk khrim se sa bikash chu acha zere serin लद्दाख रामा रिली एरिया से काउंसिल करगिल को बड़ा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन इस काउंसिल सेक्रेटरीट करगिल ला जिले नूडली ने खान लोकसो एरिया से प्रोजेक्ट ने तालुक बेमीना लोकसो महकमा ने मुताल्लुक का खाखुर नेमबो ग्राफ सिंह मलियांखोस दिवस ग्राफ से एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुजीतबा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आरएनबी डॉक्टर सिरिंग थिनलेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी आगा सईद मेहदी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी करगिल मंसूर हुसैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन ने पीएचई गुलाम हुसैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यू करगिल फिजाबानो दोनों इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी सब डिवीजन संघ को इफ्तिखार हुसैन ने मुतल्लिका ऑफिसर उन्द्र से इक्योत पिन ज्यापरेंग ग्राफ्स पियानुक सीईसी से लोकसो सिक्किम उन्हें नालसों फेस हसंग एसडीपी ने कैपेक्स पे नालसों जो लेने उत्खन यारगिया से प्रोजेक्ट ने लासुन सागिल था लुक्सबास कौन जंग कहाँ गया शकीज योत्खन यारगिया से प्रोजेक्ट उन लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख वीरे कुमार सक्सेना जिला करगिल जिक्स खोर पुनजोम से खोए जिक्स खोर पुबास हंसना ला कहाँ गया बसे थमा थन चुगजरे खास कौन था उसका हंसबा से खोए लकपी का जिक्स खोर युवासला दी यारगिया से लासुन लगो जुगबा नियंचा छो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना लद्दाख से सोमा एक्साइज पॉलिसी लेजिन तासिन गॉस बसे सेरियां सुलस के तांतना रा रोस पे चलाओ निकल नरो बसे गॉस उन तामन्य जशोक दिवस ला इजिन पियंग वंड सगस्ट्रो लेका छंग चौंचाउन ई ऑक्शन पेस्ट्रो लेका छंग हटी निशु फेचाउन गेस्ट हाउस सगना होम स्टे सगानो छंग खिदमत नुस्तान पर सोचान दोना नुब्रा छंग चंग थंग शाम दुना जांसकार ला छंग छुकबोज ला ग्रल सिर बचाओ दृश्य इखियो तीन खोजान दी मीना लाइसेंस सक्सचुए मीनर गोस्ती की शोक्षोक होने थिक पूर्च चुजरोगी कनप्री से त्रुक मेने मशक पाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर दी जिन पर नेम्बो खेते नो सर यहाँ से फिर अस्पताल ले गिना लक्ष्य छाचा इंजरियां और सर से डिप्टी कमिश्नर व प्रिंसिपल मिसिज ऑफिसर करगिल राकेश कुमार जून इलेची के कने सुमचू सखपे सेंसिस 2027 पे नालजोंस नासिर ने ऑपरेशन पे स्कोर ला बास्कन ग्रह से रुनिल तालुस बे मीना ग्रफशिंग मालिक हस दवखला डिप्टी कमिश्नर इस मुताल्लुक का खखरुल ला दिलासे रुन जून इलेजे गोमा जकमा चोखे नालजोंस गारिया बसे थमाथन चुक जरे खास कोन तास गास बसे वेरिफिकेशन बे मीना चोक बसे वक्त न थो चुक पा नियन चा शोक खों जान डाटा सजदुम बे मीना सलपन जस्ते का सिन तासिल लाज बोझ रहे जर से दयाना चोखला दिलासन सरगेला बसे गारिया बे मीना खखरुन गंगमा बियाजेरी मिर्सी से खसकोनी का अमल बसे लखतूत पहुंचतन पर चोजरे और सेरीन यो मिजागो नेनो कारगिल विजय दिवस जक मलियानो खौचा नजम से यसरी तिर मखमिस कैप्टन अनुज नय्यर एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट पर लक्षेप नंबर ग्रलसिर बसे लाजु की दोखचन दूर पुदरिंग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड खेल गांव कुरबथा हम हलियन खौ से लाजु की दूर पु एफसी बरुना डाउनटाउन लद्दाख से बारियर से एफसी बरुस रन चिकचिक इस बसे गल पुल हगन खौ से दि टूर्नामेंट पर माइल दे चब गल लगोजुक सों गावे खत्ता गांव पे टीम इश्यूज खकलेंस खान इन मेन गावसला 1211 लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेडर आशीष अनिल जोशी फेस पर फेस उसने का एसएसपी करगिल नितिन यादव खतन महिंद्रा वेहकलेश करगिल मैनेजिंग डायरेक्टर ने करगिल विजय दिवस को स्पॉन्सर शाहनवाज वारिस रिंचन डोनफेज का सीनियर मकमी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर सिविल डोनफोन सेनोनर गालुक जखन दोनों मालदुक सिमीमा से ठीक चिक मामे गांव लज्जू की दूरी वास्ता जुक से यपिन दिया बनिया दुजदाम प्रोग्राम डोनफोस सगा से दी जाती सेनोन इस्ट्रोलिका शहर बना चून ला खकलेन मिमीना बसखन फ्रालुक सुनिफियास गैस्त्री तिश मकमी स्तोद्रा बस कोजन खकलेन खन टीम उन गांव दी टूर्नामेंट पे वास्ता सिंखम चिकडिल दोनों लक्षत ना लखथुत पुरा से थमाथन चुक पिमीना बसखन टीम ला बारिक बातां तांसेन दिवनिन मिन दरसक पेपर की खबर नगा इजिन शजदबोस यजू खुदा नर सामानी फकरियां

0: ना एकदम हिज हो चेंचु चेस्ट पेन जरे यानी कि खोए ब्रांग पे नजर मो चेंचु हिज बिंग पिंग चना ये दो ना यंग बाकी जो स्पा तुष्कां चच्चा गलचा को यंग मो चोरचा गों खोरचा जैसे कि नी गो हल्के चोर जे दिया को डुल बना गों खोरे दो कोई सिम्टम जी चेंचु लखपा कंगमा हमेशा डंगो लुस पर सोचे चुक तो ना खो खरे शीशे अलता ना या यंग मीचे खोर यू नुपे तो ना खोए स्किन पो कलर पो पेल हो चेंचु यानी कि सरपो चोस ये तो ना बाकी यंग स्मन खचियो दिसमन उन्नीस नता मैदे का अल्सर बचिन और सुनसे सुनसे जख्म ता से दोस्त ब्लीडिंग छचिन गाज मन उन्जन ब्रोफिन सोस मन उन मंगमो जनक तो रेगुलर थुते या खचिया जर्मो मंगमो लुस पना थुते ने प्रोक्सिन जरकन इसमन को जनक तो दि जर्मो चपस मन इंदी कसम इसमन उन्नीस हम छचिन चुक बाकी यंग चिचिन की नते जन जा जनक तो तकदीर दे जन पेनु को न्यंबो चा थोनक तो और चार्ज बस एब्जॉर्प्शन पो आयरन कम छे चिंसु छाने दून दून आयरन एब्जॉर्प्शन कम छे जुपिन तो अते आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया प्रिवेंट गचो भोग जना बचाओ गचो बस दुख तुजना ध्यानु अते सब कुछ जरूरी दो बार वशिन की ब्लड लॉस जैसे कि अते रक्सन जैसे दे जर्मो गतो युद ना दोन रो मेथकन चोर गो जने दोन इलाज बार गोस या मसलन आयरन पो एब्जॉर्ब मचन दे वजूहत उन दक्सन अते जैसे दे वजूहत उन मिलुस पर गोस और दोना सब कुछ जरूरी की अतिस खर्ची अनुक दो चौजन चीज़ार कोस गानु वाइटमिन सी मकदार पना आयरन मकदार पर क्यों होया होती छाना सब बच्चे नता गुड सोर्स ऑफ आयरन यानी कि अतिस जान पे अनु सब बच्चे का आयरन क्यों होती है योजन सुने जना बीन्स यानी फ्रेश बीन नता बाजार ना थोड़ा दो फ्रेश बीन यानु का आयरन ज्यादा होचन सुख ड्राइड फ्रूट्स कम शूट्स खानी जैसे अति फटिंग योद खरमा योद या यंग कुशु योद गाची शीस कम शूट्स योद खानी ड्राइड फ्रूट योद नगे तो ठूले अनु योद जिन्चुक और मरपो शाह जरिंदु लीन रेट मीट यानी कि मरपो शाह सिल कम योद खान पुजरें चुक मरपो शाह अति नोरे शाह बला शाह चीना दोन देशे आन चुक करपो शाह जैसे निये शाह या बिये शाह ला दोन बच्चे खेमो रेड मीट पे अंगता आयरन खेमो चिंचुक सलमान जरिंद चिक निये योद चिंचुक दे निये नुक योद चिंचुक देन चुस्पो स्टनमा अति सुनपो स्टनमा गांबो मंगते से आलू मटर चो या मसलन मटर थोबे दता ओदे मटर पे आयरन गेला होचिन सु को ये दोना ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि ग्रीन लीफी डार्क ग्रीन जेनु डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि अति हाक सुसन साग नते जे दी सम्मान अनु खिमो जिसु तो दोनों यंबो यंबो वाइटमिन सी रिच फूड यानी कि अते वाइटमिन सी रिच फूड का तो जाना वाइटमिन सी कंटेंट खिमो खने खर्ची जाना अता आयरन पर समून यंबो तो यानु एब्जॉर्ब चेचिन सु दून जचस पो मन जरूरी इन जरे दून नि हागो नि कामल बसे अति मीमा सुन एनीमिया न अतंग फ्री चोक शुक्रिया मैम
1: बर्दलुक से स्कोर लहगवन तेसना पंचत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चितना मेरे में कांचा आकाशवाणी करगिल कने जरूरत वक्स वो फेतु बजाने में नरसुम चुना गा चेंदु के मजा प्रोग्राम प्रोनिफिया प्रोग्राम सिर तो से प्रोचुकान पुन कनिस फातिमा
2: अस्सलामु अलैकुम आकाशवाणी करगिल कना प्रोनि प्रोग्राम पो फ्रुचपा ngachangantin dun lalipsyot Yang majarit nuno panumupan yang tanggar juksu na nan mitsan mit duktuk yang ngaji juna salam po yang tidun la prudmochan songshik. Prun diri program pang sakbasis na la ngaji yang tang sakpik. World No Tobacco Day di jara sekolah pereri klip juget. Dari gabna government middle school chalis koti prunikana yang tang sakpik program cikang klip jukpi fraluz bet. Nuno panumupan Diring maize sumchu sokshiga miul gang pernuk no tabakku de zere jaktsig malla khonsinchuk dijaga khime thigang memansla hagos pelbatsuk tambaku is dokhari barang tambaku is dokhari barang phrun tambaku kolchaus chikpanang ati sihat yanir deluxe pikas dokharon chinchuk yang ati samaj pernugang ngatang stisme chajinchuk dona ngatanga ngati मालिकांस दोखारों चिंचुक निफ्रुन गातेस चिंग यान्यान दीर न्योक्सगन पो मिलोप शुक्चा दोना गातेस सुस कातो सिगरेट या बीडी थुमदना दोन ला दीर न्योक्सगन पोर्जे चुकपी रोक्स बचा दोना गातेस तंबाकू माकोल बादे मालसे का रंग इर्गो अफन मी जनुन दोनचा खजास ना सुनमान दोनचा दोना गातेस खुचन जनुन दोनचास पो मना खचन इंचुक प्रून तंबाकू कोलचास नतांगा लोक्सो नतंगन रे कोंचिन सुक दोना ngati ट्रोकना छाचिन सुक लोनंग दी तंबाकू कोलचास बसे मिमा सुनि ट्रोकना छाचुक तंबाकू कोल मकोल खानुन लंग

के पार, मैं चुप चुपा के करता रहता था शरारते, मगर जेम्स बॉन्ड की तक मुझको ढूंढ लेते। फिर भी छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाय कह दिया। इस तरह चैप्टर वन शुरू किया, और टीचर तुम हो मेरे सर का ताज, और टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरह, तो क्या बताऊँ क्या क्या देखा वहाँ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम

0: सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyanchain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242।
3: نوچه زاکاشوانی کارگیل کنه زرینیت پرکی غزل دگنتی خدمت انجام چوگه یه مزاد

0: गावे फसना कुन गतांगला सिक्रेट बेडी जोस्ते का थोपचा पान खाने ना अल्दात पे तवाकू चोक्स कुन्यानुक योंचा गुरका जेरे दुन मिन मा गती नंग कुन्यानुक आम गोने योत पे चिलिम गावे स्टोले का गतेस तवाकू थुंग मतांग लेगिनास दोखर मना मांगमो योंचास इन जरबा छिंदो दिस सिक्रेट तवाकू कोलचास पोज बसे गती लोय का असर पु मना क्यों मुफोक्चा इन जरंदो गाउस बसे गतांग कैंसर चोक जरमू ने शिकार दंचा इनखान तबाकू कोलचास पोज गती आजा व जवारिह गांगमी का मिशस्पी का असर तंचास इन जरबा छिंदो दी तबाकू कोलचास पोज बसे इंसान हार्ट अटैक संग छात जरबा छिंदो चे जरबाना दी तबाकू पेनो निकोटा ने आदत पु जक बजक स्केतिनचिक छात जरबा छिंदो गाउस बसे मिमंग सुकुन जक बजक दी मुश्किलात पेनो खतिनचिक योते इन जरबा छिंदो दी तबाकू असरात पु रंगी का फुचस पुना निम्बो निम्बो माहौल का संग असर तंग इंचिक योते इन सो दी फरजना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट मेंबर कुनेस सना 1987 अनुक दुनिया इलिवाली का दी तबाकू स्ट्रोली का छायुत पी जरमून ना शिचस कुने का दहकीक पसखन इन मिन जरबा छिंदो 7 अप्रैल 1988 अनुक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चोकना रेजुलेशन चिक चोसखन इन मिन सोक गवानुक 31 मई लोयुंग मा वोल नो तबाकू डे मिंग तक्सिका मनाई बोझ जरे स्कसखन इन मिन जरबा छिंदो दि फरेजना दि तबाकू गेत खान सगेत पोन ना चोखान फैक्ट्री पोन दुना लखथुत बखान कुन गंगमी का दि तबाकू शित्यानुक ना आजाद बोझ जरे हगुन फ्रोट चुक से इन जरबा छिंदो चे जरबाना दि तबाकू स्टोली का लुई लोखोर ला दुनिया यानुक 8 मिलियन मिमंग्स कुनी स्ट्रोक ना सों से इन जरबा छिंदो गवानुक ना 1.2 मिलियन मिमंग्स कुन तबाकू मिथुंग खान कुनी का संग असर फोख से शिसे इन जरबा छिंदो दि फरेजना मिमंग्स कुन ला तबाकू दोनचस सी चोकपोर न्योक्स कुन तंदुक स्क्यूर जेरे इन सो दोना दी दुनिया पु तबाकू फ्री वर्ल्ड चिक चोस जेरे इन सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे हिसाबी का ताना दुनिया यानो 80% मिमंग्स कुनिस तंबाकू कोले इन सो जरबा चंदु यंग न्यू जनरेशन कुन तंदुक तबाकू शीतानुकुना थगरिंग जोक जेरे संग फोरतांसे इन जरबा चंदु कसतांगस नरिस परोंदे के जखसे दिरिंग से त्रसो यंदा सपलत चुगे न्यन नस दिरिंग से दी त्रसोला दिरिंग आकाशवाणी करगिल ग्रेलिका सगित प्रोग्राम पैनुक त्रसो तमतमीना हायर सेकेंडरी स्कूल छनगुन ना काचो निसार अली लेक्चरर एनवायरमेंटल साइंस के जुज क्यों सोत निसार अली साहब सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम
0: निसार अली सर जो सगवासन अल्लाह गतांगला दुनिया ये लेवल का दखसांगता फमाचिक जक्कुन गता डुले नेत इंतना जो खुसूसन दखसा वोल लेवल का दखसांगता दुतो जक्चिक माने बेजु केदोला गते जरे जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स टुगेदर जरेन चिक दुतो गता थीम चांग अति यूनाइटेड ग्लोबल वार्मिंग
1: सबसे पहले ना बख्शिश जरूरत की थीम्स अलग अलग डे बारे मनाई बने अदूनी बारे बुले बस भी बहुत बहुत बख्शिश शुक्रिया सबसे पहले पेरेंट्स डे ऑफ पेरेंट्स इन चिक डे बिनु दरे यूनाइटेड नेशन इस जून फर्स्ट ला मता इंटरनेशनल लेवल का यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स यूनिफेसिव जो पेरेंट्स जिसके बच्चे हैं जिसके बाल बच्चे हैं जो हमें सब होता पता पेरेंट्स दोनों बारे दोनों डे जगते हैं जैसे कि अलग अलग डे में जग पता पॉपुलेशन डे एनवायरमेंटल डे अर्थ डे दो चौथा डे चौला पेरेंट डे रोज डे चौला डे ऑफ पेरेंट्स डे जो डे जगदूसा चीज रहा 2012 है ना स्टार्ट सो यूनाइटेड नेशन स्टार्ट भी महीना पता हदे महीना डे यूनाइटेड नेशन इस डे डे मनाए महीना हर साल थीम चाहते यंग डे का थीम डिस्कस टुगेदर फॉर पेरेंट्स टुगेदर फॉर तमाम पेरेंट्स जो जमा हो जाए एक साथ इकट्ठा हो जाए यक्ती हो जाए यूनाइटेड हो जाए सब मिलकर चले तमाम पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे का मदद करे दूसरे दिची थीम टुगेदर फॉर पेरेंट्स आता हूँ पेरेंट्स जब खौफ फ्रीक सोंग फ्रीक सोंग बच्चे सोंग खे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाम से बड़ी छिन खुश खुरी दे फूला बोमोला या बुछाला खुआ जो औलाद छियो अधूनी अधून स्विमिंग ना अधूनी फियान एजुकेशन अदुनी जिंदगी लाइफ पुर यला सवार बेमीनार यले बेमीना खुश खुरी पूरा लाइफ वो ची बिनु खुश पूरा पूरी लाइफ सेक्रीफाइस बिनु जो है बेन मिनु चना खुश गास फ्री गुत बुछे गुत बुमे गुत

0: खो जब तक खुरी पेरेंट्स पूरा सपोर्ट तंग समय खो दुनिया गजब फील चे आगे छामे छन दे पेरेंट्स से सेक्रीफाइस बसे खे दे पेरेंट्स की कोशिश पुस बसे खे पेरेंटिंग पुस बसे गति दी सोसाइटी गति दी यंग मेरी जवान कुन गति अलग अलग जनरेशन जे दे जनरेशन आगे छे मीना गमी रिया बस सपोर्ट पुछती उस अपने पेरेंट्स जा पेरेंटिंग से गति लग दे पेरेंटिंग पेरेंटिंग मतलब बच्चों को कैसे वो करना है जवान छन पेरेंटिंग पु बड़ा ब्रॉड टर्म छ यहां से ना ध्यान पेरेंट्स आ तामज ना खुरी मना पूरा सेक्रीफाइस बे लाइफ उस सेक्रीफाइस बे मने बिल्कुल कचुक बसे ख्वा इनकम खोरे ची बसे नौकरी बसे या जॉब ची बसे या कचुक ची बार गोज ना बसे खोस खुरी इनकम पु जनरेट बसे खुरी फुल एजुकेशन ची ता थों सो दो ना दे फ्री में ना पेरेंटिंग मतलब पुरिया नो फैमिली से इन्वॉल्व छिनो कम्युनिटी से इन्वॉल्व स्कूल से इन्वॉल्व सोसाइटी इन्वॉल्व दून गांव मा इन्वॉल्व छाना दे पेरेंट दो गांव मा दो पेरेंटिंग से अतन आमाज ना मना खुरी सेक्रीफाइस बे दो बगैर दो में फैमिली से ख्वा सपोर्ट बसा सोसाइटी कम्युनिटी स्कूल दोन गांव मा सपोर्ट बस मने खो आगे छिनो दो सलांगा ची बस पेरेंटिंग खे चम से रिस्पॉन्सिबिलिटी दो खोस पेरेंटिंग मेनो अदु गांव मा ची बस दी दे दे का गाते दो रिकॉग्नाइज बचा की खोस खुरी लाइफ ची बस सेक्रीफाइस बस मीना खे दे सेक्रीफाइस पे मीना दी दे गाते दुनिया नो पेरेंटिंग से ग्लोबल पेरेंट्स डे रे दो मने बिन जु 2012 एन दिलते हर साल
1: बख्शीश काचो सा मना अर्द मो मोजु छाना दसा गाती फ्री का तमाम सोसाइटी या मिसाल दसा रेज मोजु की गाती पेरेंट्स ने केरे फैमिली मेंबर व सोसाइटी छाना देन उन यंग आता दुसुस कंसेप्शन चंग यु मोजु की दसा गाती फ्रूला आता सुम भी होते रेजु दसा मिसाल तो पा चुप गाती पेरेंट्स निसले से गाती टीचर पो या पेरेंट्स रे जु व सुम रे से मिसाल तो पा दसा कोई बख्तों जी का तुम बना खा नमक मोस गने दुस एक पेरेंट्स रे नु छाना दी पेरेंट्स कुन गंगमी यरा जरना खने मुकाबिल ला दे फी का चम चिक जिम्मेदारी यु चाजिन दिस को ला तक चिम
0: पेरेंट्स जमान यम सिर्फ अतन आमा ngas na maz du gate maz de care takers ache care song song de framing na koi atama minduk lekin koi bilkul posh kho palan be quality ko education and koi social skills and koi har cheez an kho achi be madad be kho dena be dum na care takers ya ngates care givers ya teachers ko teacher us kho madad be dun gama parenting song song dun gama de estos de kho cheez chibin to koi growth mina de fru ga chu kho pyar chibachino kho comfort chibachino song song kho aram chibin kho security chibas thun दुन गांव में पेरेंट पोस खुश खुरी दे नाओ पूरा सेक्रीफाइस बसे खुश बेत जैसे स्किल्स सोसाइटी को ची बस दुखचीन लोगों से को ची बस इंटरेक्ट बचीन या सोसाइटी नो खुश इंटरेक्ट चे वो खुरी सोशल वैल्यूज ची बसे बड़े दुन गांव में पेरेंटिंग सोसाइटी खुश जैसे टीचर पोस दे पेरेंट पोस खाल सब दो में खो वैल्यूज बिहेवियर वैल्यूज दू रॉन्ग इन दू सही इन दू गलत इन दू बचीन दू बच्चा मैन सो मोसो गाती जना दू हलाल इन दू हराम इन गचु गेला लस पुगावा खुश दू सबचा गावा सुल सब दे टीचर पोस सब दे पेरेंट्स the care givers give the care taker for chamnuja doben ma cha education der sam ga chuk education chin so khang no education curiosity zer na education kho motivation kho banare ga chuk education chi kho don ga ma de parent pos kho lob chin ja doben ma kho har stage ka cha man yer ske kan tan se agan to do 3-4 sal ya to kho har stage pe ka akhri stage pe de parent pos de first support ba chin jo har stage ka ga chuk mushkilat chin ga chuk problem chin ga chuk issue yon don ga ma issue don दे पेरेंट पोस्ट दे टीचर पोस्ट दो केयर टेकर पोस्ट खो पूरा सबसे खे जिंदगी पूरा समार बचिन जो ताना खुस कुरी पूरी लाइफ पु हम दे स्टूडेंट पे फिया दे पेरेंट्स दे बच्चे फिया दे फ्री फिया दे भूमि फिया खुस देने में उसको खे लाइफ में गचुक डिसिप्लिन चिक अपना गचुक गैला डिसिप्लिन चिक हमेशा डिसिप्लिन पे मेंटेन जखन दुन गांव मा दे पेरेंट्स पोस्ट खुस दे पेरेंट्स पोस्ट दे केयर टेकर पोस्ट टीचर पोस्ट खुस सब जु छाना दु खे जिंदगी सक्सेसिव या यानी दुन गांव मा खे सक्सेस आगे लाइफ पुची बसे खुस गाते ची बस लाइफ पुची बसे बचिन जिंदगी मुश्किल ची बस फेस बचिन जिंदगी ची बस दुखिन आगे सोल्यूशन ची बस दोनों गांव में पेरेंट्स को देखिए टेकर को दोस्त है दे फिर बना दी पेरेंट्स दे गाते हम दुनिया बने दो मन कोई सेक्रीफाइस पो एक्सेप्ट बा कोन सो सो दो एक्सेप्ट बा दो
1: पक्षी दे काचो सब मन द मो मोजु छाना दक्षा गाती यूनाइटेड नेशन या ग्रालिका गाता दक्षा या प्रोमाचिक गाता दे कुन गाता बाको बोस जरे गाता स्कली होता जो नैनो ना गाता दक्षा जरे जो गाती की यूनाइटेड नेशन पीस की पार जरे मिसाल छाना दी तोन पो यरा गाचुक जे दी स्कूल सा सिकास
0: यरा जना द जूनी मेन पेरेंट्स डे नो द डे ऑफ पेरेंट्स द खनपो यूनाइटेड नेशन पेरेंट्स डे द खन अदुन थु थिंग यंबो यंग डे बिन नु द बिन जु इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर यूनाइटेड नेशन गता छो इरा दे कि दुनिया ए मना गाउ मी प्रॉब्लम चियो न ची सॉल्यूशन चियो न दुन गाउ मा हल बे मीना दु एस्टेब्लिश बे खन जु बाकी दोस बसे दुनिया न खोस कोशिश खुई हिसाब पे का खुरा यन में हिसाब पे का दुनिया नु ची बसे गचुक कॉन्फ्लिक्ट चियो गचुक प्रॉब्लम चियो गचुक इश्यू के दुन गांव में हल भी कोशिश भेज दिया दिमिना अति छो लारी स्केल पर गाता जैसे छोटा मोटा

0: ju chana global ya strunglus bacho ngatang rerin riri kale gina prize in suk chana ngata tus pa khachir za tamnu ka cho sahab akhir pi ka yang ngati mimans kun la rishi ta nuk na yani environmental strungs ja patte feraz khachtans fera rik timol
1: yes sir ngate dare ngyan me sa po awareness zaman ga ma sun syo de social media tu zin mass media social media zana ya electronic media har chiz ngata global warming zare climate change zare har chiz ngyan me sa school sa har school me ye sab ngata chuenyot benyot ab waqt aaya hai ki hame action lena hai chahe individual lena ho jo jusen action po global level pe hame lena hai ngata global level ka len ma goshin jeno ngata national level ka len ma goshin ngata state level ka ngata district level ka ngata individual level ka हां सो लास्ट पे की चीज इंडिविजुअल जब तक हर चीज रिलायंस सोंस में हुआ ये एक्ट पुगाता दूसरी सिग्नल पुतान ये खत्म होने वाला ये हमें असर करने वाला ये हमें मुश्किलात पैदा करने वाला है आगे में ये वक्त पे नति वाटर पे कमी खत जक वजह क्षेत्र नति माहौल पे गंदे क्षेत्र पोल्यूशन पे जक वजह बड़े क्षेत्र दोनों रिलायंस सोंस से हर इंडिविजुअल लेवल के राय हिसाब पे का कंट्रोल बस मैंने नता मन चाहे यानी दू एक कॉमन माना इंडिविजुअल सा मैंने माना हर चीज इंडिविजुअल से लेके ग्लोबल लेवल तक हर फर्द का ये ड्यूटी है वो चीबसा अपने माहौल पो नति पोल्यूशन कम बचा माहौल पो साफ रखचा और न्यान में हिसाब पो नति कचुक बस कता ग्लोबल वार्मिंग चेंज ने वाटर कमीशन दोन गामी का वाटर कंजर्वेशन अनु गामी का पोल्यूशन कंट्रोल अनु गामी के चीबसा लास्ट बस इंडिविजुअल लेवल लास्ट बस मैंने मतान इंडिविजुअल लेवल के ना संगते नेशनल लेवल के बेदा चलो लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे चांग मेत पना मैं दे देवी ना गता तमाम माने ज्ञान खान कुन नति नौजवान कुन या नति अछनो मुंदुन गामन की ज्ञान में हिसाब पो नति पोल्यूशन कम बचा गंदगी कम बचा वाटर कंजर्व बचा वाटर लीग ने कीमती चीशीन वाटर कंट्रोल बस यूज बचा कंट्रोल बस
0: बशीस कचो साहब यारे जरी रंथोशान वक्स कुनाना वक्स फी से आकाशवाणी करगी लिख रही कसियो ते यरी रंथोशान मोतिक चो समझो मिमास कुन सकवा लेप चुक्स भी यराला ओजु सरीमो या सलाम वाले
1: बशीस या सर वालेकुम सलाम बशीस मेरे
0: त्रिसो यंता सकवा ले त्रिसो तंखन पे इनमें काचो निसार अली लेक्चरर एनवायरमेंटल साइंस कसता प्रोग्राम में संसे का काचो आलमगीर इसका त्यानो सहमस्तोत खेक नजर
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: cause free demar pen chuk juk se gap na free kang asar cha jin ne phu sang kole kole len mi cause koshis ba che jin de kana nga te khachi kana tax pa che ti nga chi ata pas thu nu chu nga chi ka pas thu nduk de kana nga sang thu spin de re zen duk ni nga ting nam sang nga ti ju nga te skel bi filang nga ti ma shida na du dur be fila sak pa se nga te jang nang pian na tar go sha in chuk jang nang pian nu pehla du mi kol cha de kana nga te kole kole ma shira nu duang ban bar go sha in chuk Chanani Sadak Ali Sarikana and Tansuk Party Swiglip Chuget, Diring the Wall No Tobacco Deskorla.
1: Daridika Juksiut, Sadak Ali Sar, National Tobacco Control Program, and Ulas Bin Juksina, Ki Arikana, Wall No Tobacco Deskorla, Tiswig, Arikana Tit, Slow Alekum. Marché du jeu, elle a un sort de la mère. Au juste, elle m'a dit que j'ai une toastienne, Vax Piana, Vax Pince, à Cachavani, à Grappé. Tassani, elle a un sort de signal là, dédié ni chapeau, wall, non, tobacco, des éjectes, manaïve, et notamment, ni sort de signal là, il reste mati, ni mansouna, il reste d'amour là qui, dit national tobacco control program pour dur, quatre chivas et un test, strulva, durchin.
2: National Tobacco Control Program, जो Ministry of Family Welfare Ministry तरफ ना मध्या जो आल वर इंडिया 2007 आते हैं ना जो इंट्रोड्यूस हो मिलता है National Tobacco Control Program जरे जो National Wide Act Program चीन पे National Tobacco Control Program ये प्रोग्राम ये अंडर तीन सेक्शन हो जाए एक हो चीन सेल हो चीन सेल सुबिस लस बच्चन सो मसों एक हो चीन स्टेट कंट्रोल सेल चीन हो चीन National control cell koram hojin degana state control cell chhonchin degana district tobacco control cell chhonchin so so nati dikari lo tham pin district tobacco control cell DTCC jaisin so so odu tin dena segment ambas bachin pe tanadi kari pehla jo oral mana india nu introduce som in 2007 8 national tobacco control program ye program bo main jaise ki atana tobacco user tobacco use be tobacco ka control beving na government of india se initiative shi lenin pe dasatana garila May 2023 nelti garila du introduce som se chana gatar di national tobacco control cell under ngachas dianu last bat pe ngacha already guidelines ministry na guidelines ho jinde guidelines se sab ngachas the tobacco control cell through last bat pe
1: Channeling at our Entesian Loop National Tobacco Control Program, the Entesian Las Binjuk Sin Sukni, Channel Sabasanatis Natimi Mansula, D. Jacobasik Pihila, the Tobacco Horanchin, the Yaris Natimi Mansula.
2: Tobacco Zena Tobacco Chins, Zena Tobacco Plant Chins, son of the Podics of Shinson, Sondumatis, the Yangati Subziosita was what of Chinsuk, Sonson Zata Tabu, Jesse King at the Andropper, the Gujarat, the Zodejaganano Tobacco Plantation Township, Sura. Tobacco and the Chamans of Tobacco again, the Plant Chins. में ज्यादा ना निकोटिन हो चिंदे सो सो छन व्यू तो जिन जो पहला दो दिन हम अफसोस पुंगाते जो सब्जी तो जो गाते जो तब चा तब सुनो दे लुमन सब गाते जब ना हार्वेस्टिंग बजो दिन कोले फुच फुत नो दोस कम सुक्सेस कम सुक्सेस ना दो मार्केट अनु प्रोडक्ट जसे ओदो मार्केट अनु मींस जो टावा को गाती दो टाइप की प्रोडक्ट जसे सो मजो एक जिन स्मोकर फॉर्म अनु को चिन एक जिन स्मोकलेस फॉर्म अनु तसा टबको मति हम पजन जैसे कि आते सिगरेट को ना सिगरेट सा तमकु इन्फेंजन रे तमकु इन्फेंजन दे दूसरा ने जैसे कि स्मोकेट फॉर्म में आउचिन जैसे कि आते आते चिलिम थुंगे पुराना जमाना को देश जमाने मॉडर्न जमाना हुक्का थुंगे सिगरेट सा जगह में सिगरेट थुंगे उन सब टबको स्मोकेट फॉर्म पसो देखन यहां चीज क्यों चिन जैसे कि आते तम ना सुविधा जे कुल लिव जे खानी जे दुना ए गुटका जिन जिदे मतलब बाहर पनेश के गुटका जिन जितम ना उदुने आ तंबाकू दे उदुन सब चुइंग तंबाकू जिन काचिक दात जिन जक्षिन काचिक खुरे जक्षिन सो मसो न्यू इसका तंबाकू प्रोटोकॉल दो दुन इसके नुकसान है सो मसो तना नतेस दे तंबाकू सिगरेट यूज है सिगरेट यंग चीज बनो दे नु सेकंड हैंड जाओ जिन दक्षा नते सिगरेट ना थुंग ना तो देगा सुन जिन की का असर सचिन सो मसो लेकिन ना पियानो गाती फुबस भी जो मत Song sketch out and the girl got to do Nagato, Hoyka was such a second hand smoking session. Song was on. Baki, she does not, Matapato, she does not act to Hora, a such a Hatan shot kiss with that and you connect to Nazam the quick and which and the duping and the day, Chisha, which and the Nagato Inicum, a such was in love was and was old, too much shetamit, Chanako curriculum was such it, quick, Malab Khan Harabjit. کوئی لیپ سن خراب چیت سوما سوم اور زیادہ تر مطلب کو موت کے انسر مت اورل کے انسر مت سوما سوم تھروٹ کے انسر کینسر یوں دے دھیان سے چھچن دے تب کچھ
1: Si generis mana dulu bahasa Moski ni dekana tiga pengatang tu baku gas suci tebaku got nak tu kes nga symptoms bukai cuci.
2: Symptoms pada ada tabaku di inde tabaku sab sepeda nak atas main cis kama panis dia nak tabaku cuci tabaku cuba silap seno tabaku los reason tu gasis puci tu zere semua semua dia nak gas kacik zere dia jadi kengati pun sahut dulu nak tabaku tu macam bas bas bat semua tabaku use macam bas tu bat dia nak

क्लास का शिक्षा चिन चिक चिन दा चिन गा दे फैमिली होत फैमिली आ लोगिया का का चीज या आता चीज थुनो न गा तो शु संग सम जे हला दि गा ची का कास थुनो आता थुनो चिता म हो दे दा को हम दे निग ने होत चुक चलो गा सा फेस बे जरे दे गा ते गा ची मतलब जे से गा चो काउंसलिंग आ सोसे टीचर ने मैक्सिमम दे गा स्टूडेंट का चीज नो वनी हा ची बस दोस्त मिन जबना गा ची खम पर सुरे खम तम व पिंदे गा तम से आता फास तम तम तम ने बीट थुनो दुक से गा चा लोस पिंदे लो चा फैमिली न वो से नो फैमिली चिक चीज थुन न गा तो दू नतीज देना ए शो कॉपी फ्रूस शो मैं नगाता कॉपी बचिन दे ची बने ची मिस ची बने सुनसेस कॉपी बचिन दू सोच ची रीजन ची दू छाचिन दूसरा ची छाचिन जब ना दे नगाती सोसाइटी और हम मन नगाती दिया वनु की टेंशन छाना स्ट्रेस ची छाना कतो सिगरेट ची थों से तमोपी थों से सिगरेट ची थों मन टेंशन बहुत दूर छा जरे चाचा चा मिशा दो एक मतलब मिस सोचिन पे देना ची बचिन दे नगाती सुकुल जैसे की

0: उसमें ना सीधा ड्रग्स के खोमा ना छछा इंजन और इसलिए तबाकू का कंट्रोल दे नहीं ना दियो एक तो तबाकू में जैसे बंद भी एक तो ना रहा विल पावर का रास कंट्रोल बस यहाँ छछीन काउंसलिंग दे ना चीज यानो दिया साइकोलॉजिस्ट दुख चीन काउंसलिंग पूरी का जैसे कि दे मतलब 18 साल बस माइनर फ्लूस का तो तबाकू थोन ना उधर ना जैसे सीधा काउंसलिंग पूरी का ठीक बचे काउंसलिंग जैसे सो सो दे कर रहा यो चीन शिमी दिया लो मैक्सिमम मोचिन दिए ना चीज सक्सेस रेट ठीक ठाक हो सो सो पेशेंट ना ठीक ठाक ठीक सो सो दिया मोचिन एलएस फ्री तब को सजेशन से कारगिल एक सेंटर सो मोचिन दिया दी डिस्ट्रिक्ट और चल को दे दिया लो तब को बन छकन ने जांच बन बचे बन सुन से फिर सारा चा काउंसलिंग बस माइनर सब नवाले सा काउंसलिंग का ठीक चल रही है देखा ना अगर का तो वाले बनना एडल्ट बनना का तो उधर लगा चल दिया लो सीधा एनआरटी जरे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरे ठीक ठाक हो दे फिर इलाज रुक चुके सो सो दिया लो मैं ठीक ठाक साइकेट्रिक डॉक्टर या अंदर दिया लोग तबो कोई फैला गुल चुके और दिया लोग मेडिसिन चीज हो ना कतो फ्री कोस्ट पे इलाज और दिया लोग अलग अलग मी हिसाब ना जैसे कि चिकची की दे या ना मुझे चिकची इस तुझे ना एक दिन हमें 5 दबा सिगरेट थूना मुझे चिकची तीन थून हो चिक चीज दो थून चिक एक डबा मैंने सिगरेट थूम दे कोई डिपेंडेंसी हो जिन्हें कंजप्शन को खाची जो कंज्यूम में हो ज्यादा चेन स्मोकर जो ना सारा चेन स्मोकर से जब खाची काम हो चिंचा कौन कौन दी हिसाब कर मेडिसिन या थेरेपी कोई इलाज दूल चिंता एनआरसी देखा ना मैक्सिमम पेशेंट दस दिया उसे अगर सो मार्जिन ना तो दिस सेंटर पे उनसे कोई रहा इलाज बा ये चिंता
1: Maksud ni harus mana nanti mahu bahasa muski mati tu baku desa di harus nanti memang sunnah matas jamul laki tu baku desa di ring jape nucah mana konsin.
0: Hari 31 Mei malam ministry na 31 Mei already world note baku desa di jasa di jape nuk world note baku desa di jape nuci baca jadi mana maksimum logo yang awareness tau.
1: Awareness.
0: Orang sama misalnya jitna bahasa ke awareness tau cie. जैसे कि दिन अच्छा अवेयरनेस तो दिन अच्छी चीज होती है जो नमूना तो मैराथन जा सकते हैं सो सो मैराथन इन थ्रू मिसा का अवेयर वाकी तबाको मातूम जरे देख अपने अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम जा सकते हैं टीएफसी तो चौना अच्छा प्रोग्राम जा सकते हैं अवेयरनेस तो आजीन देख अच्छा मतलब अच्छी दी तबाको सेशन सेंटर इला सुम हो जिन पे चिकचिक अच्छी हो जिन दी सेशन सेंटर पे दूसरे पेशेंट सब इलाज बचाओ कौन कौन सी तो अच्छा एक जैसे चिकचिक अच्छा हर सुकुली के साथ सुकुली का सबसे सुकुल सब तबाको फ्री हो सकते हैं सुकुल सारा वो को फ्री वाला समझें और वो दिसुकुली का समझे फिर सारा ना जैसे कि मैक्सिमम नाचना डाउन को एडिक्ट नाम चेंज हो ना नाचना दिया एडोल्सन पीरियड के चेंज नाचना दिया 15-16 साल के निकल ना नाचना ज्यादा
1: एडिक्शन
0: समझे ज्यादा लेकिन ज्यादा थोड़ी देखिए मिक्स होने से ना सुसान तुम्हें पंचायत सा विलेज सा यूनिट विलेज सा अच्छा अवेयरनेस तौचिन काउंसलिंग बचिन सो सो और तीसरा अच्छा चीज बचिन जो ना इम्प्लीमेंट बचिन का दासा यो नति कोर्ट पर एक्ट जरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी के कंट्रोल बाय एक्ट चाहिए जो कोर्ट पर एक्ट जरे COTPA ACT एक्ट ओदे मतलब पचिन सिगरेट एंड अदर टबाको प्रोडक्ट एक्ट जरे 2003 में आउसपिन ओदे ते हिची छ जनो ओदे ते सेक्शन भी ओदो दो मीमा सुनला वो से पता दुपहर में नजर रीन सोंग सों सबसे पहला उन अधिकारी ला ज्यादा काम था सबसे पहला सेक्शन 4 जिंचियो सेक्शन 4 इतने हैं चीज जब मैं पब्लिक पुलिस हम मैंने सिगरेट में ये चमें ना कहते जैसे कि पब्लिक पुलिस हॉस्पिटल हो चीन स्कूल हो चीन कॉलेज हो चीन मार्केट हो चीन पब्लिक पुलिस अगर पब्लिक जम एक सोंग सों ना उधर जगह निकल मैंने बिल्कुल सिगरेट हुआ बेन इन सेक्शन 4 इतने हैं अगर सुस का तो सिगरेट हुआ ना कोई पेनल्टीज हो सके का चालान था मत सेक्शन 6 इतने हैं चीज जब ना इन अति फिर सब माइनस ना बिल्कुल पहला मत था मत अपने दुकानदारों ने सिर्फ माइनस 18 साल बस कम पाले बिल्कुल सिगरेट हो मैं चमें नौ दो जुड़ो नहीं सेक्शन 6 बी इतने हैं जब ना उधर स्कूल ना रिलेटेड होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चीज ना थी ओदे बाउंड्री का ना 100 यार जब ना 92.4 मीटर सब पमाने सिगरेट जा पहन चमें लेकिन सेक्शन 7 जब जो दे सेक्शन 7 इतने हैं चीज जब ना कोर्पा एक टाइम रूल चोस होती है पिक्टोरियल वार्निंग हो चुकी एक पिक्टोरियल टोटल 85% वार्निंग हो चुकी 85% वार्निंग तो ना 65% पूर्व पिक्टोरियल वार्निंग हो चुकी पिक्चर शो समर हो चुकी सिगरेट डेटा बेकर लेकिन अब 20% पूर्व आती चीज शो समर हो चुकी टेक्सचुअल वार्निंग समर हो चुकी ये वो दे वार्निंग योद्ध खाने सिगरेट उनमें ने तहाँ सोम मंगे खाने दुकानदारों ने लाचों मंगे जब मैं खुला सिगरेट लूज सिगरेट बिल्कुल सोमा कहीं नहीं वो दे का पेनल्टी ज्यादा हो अगेन मन उस देना बंद होने का तो कोई का सिद्धा कोई लाइसेंस भी कैंसल वासे कोर्पोर कमिटीज कोई का पूरा सीज बार ये चीन सोला दी सेक्शन इतने हैं दिस सिगरेट के दिए सब लीगल लास्ट शो से होता है
1: Exposing industry tactic on tobacco and nicotine products and so on.

0: लद्दाख रावण रेल एरिया से काउंसिल करगिल गोवा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखा उन्हें काउंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल जिले अनुगुल नियतखन लोसो एरिया से प्रोजेक्ट उन्हें तालुक बेमीन लोसो महकमा ने मतलब आखा खुरु नंबो ग्रब्स चिक अम्मा लेंख्योंस दिवासला ग्रब्स पे एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुजतबा सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर आर एन बी डॉक्टर सिरिंग थिनलेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी आगा सईद मेहदी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर एन बी करगिल मंसूर हुसैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गुलाम हुसैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल इंजीनियरिंग विन करगिल फिजा बानू दोनों इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर एन बी सब डिवीजन सांकू इफ्तिखार हुसैन न ए मुतालिक ऑफिसर उन्द्र से ग्रब्स पे अनुक सी ई सी लोसो सिक्किम स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ने कैपेक्स पे नाजों डुल निर्धन यारगेसी प्रोजेक्ट उन्हें लसुन सगील तालुक्स बस खोजियां गारिया छकी जोतखन यारगेसी प्रोजेक्ट उन लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना जिला करगिल जिक्स खुर्प नजम से खो जिक्स खुर्प बस हंसनल्ला गारगिया बसे थमाथुन चुकजरे खसकुन तास गाज बसे खो लकपी का जिक्स खुर वसला दी यारगेसी लसुन लग घोसुक बा चोक लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेनास लद्दाख से समा एक्साइज पॉलिसी वाइज इन तासिन गॉस बसे सरहियांस पुलिस के तांतनर और उस पे चला को निकल नोरो बसेस गा सुनता अमन यंचा शोक दिवसला इज इन पियम वेंट सगस्ट्रोलिका छांग चौचाउन ई ऑक्शन पे स्ट्रोलिका छांग हटी निशु फेचाउन गेस्ट हाउस सखना होम स्टे सगनो छांग खिदमत नुस्तान पोस्ट चौचाउन दुना नुबरा चांग थांग श्याम दुना जंस्कारला छांग छोक बोसला ग्रलसिर बचाओ दृश्य इहोतेन खोजान दी मीना लाइसेंस सख्त मीनर गोस्ती की शोक शोक ने थिक चुजरू की कनफ्री से त्रुक मैंने मशक पैन लेफ्टिनेंट गवर्नर दीजिन पुनेम्बो खत्ते अनुक सरहिया से फ्योक्स पुल लेगिन लक्ष्य अच्छा चा इंजरांग असर से पुरगी खबर इंतस आकाशवाणी करगिल कनस नाबिनचिग डिप्टी कमिश्नर व प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर करगिल राकेश कुमार इस जून इल्जे चिगी कनस सुमचु छकपे सेंसस 2027 पे नाल जोंस नासिर ना ऑपरेशन पे स्कोरला बसखन ग्रल सिर उनिल तालुक्स बे मीना ग्रबशिक मली एंख्योंस दिवसला डिप्टी कमिश्नर इस मुतालिक खखुरुन ला ती लसिरुन जून इल्जे गोमा जगमा चोगे नाल जोंस घारिया बसे थमा थोन चुक जरे खसकोन तांस गाउस बसे वेरिफिकेशन बे मीना छुकबो से वक्सुन थुप चुक पा इंगियन चशोक खोजान टाटाउन सख्स दुम बी मीनर सलपो जोस्ते कस नी तहसीलास बोझ जरियांग अजर सत दयाना चौसला दीला सुन सकर गेला बसे घर गया बे मीना खखुर उन गांगमा बियाजेरी मिर्सी से खसको निका अमल बसे लखथुत पांगस्तान पोस्ट जरियांग असर इन योम जगनानो करगिल विजय दिवस जगपो मलियानो खोचा नजम से गैस्ट्री तिश मखमी से कैप्टन अनुज नैयर एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट पुल अक्षेप ने यंबो ग्रल सिर बसे लज्जु की दक्षन दुरपु दिरिंग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड किल गाउं कुरबथंग मलिन खोस यहां लज्जु की दुरपु एफ सी बरूना डाउन टाउन लद्दाख से बारी अरसे से एफ सी बरूस रन चिक चिक बसे लगें खोसिन जी टूर्नामेंट पर मई जे चुप गया लगोजुक सोंग गवे खत्ता गांव पे टीम निशुस खाक अलेंस खान इन मेन गवासला 121 लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेडियर आशीष अनिल जोशी फेस्पर डोनफे जोस्ते का सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल नितिन यादव खाकचन डोनफे जोस्ते का दुना महिंद्रा वेहिकलेश करगिल मैनेजिंग डायरेक्टर ने करगिल विजय दिवस पे स्पॉन्सर शाहनवाज वारिस रिंचन डोनफे जोस्ते का खाक लेंस दयाना चौसला सीनियर मकमी ऑफिसर उन पुलिस ऑफिसर उन सिविल डोनफोन और सेनोनर गलुक जखन उन दुना मलदुक से मीमा सिथिक चिक मामू गांव लज्जुग इस दूरी वक्स लज्जुग से इक्योत पिन देवरें दुजदां पुन अगर अगर डोन फुन सगस दिजा तिरसेनों इस ट्रोली का शर्बना चो उन लख खकलेन में मीन बस खन फ्रालुक सुनिफियास गैस्ट्री तिश्मक मी स्तोद्रा बस खों जां खकलेन खन टीम उन गांमा दी टूर्नामेंट पे वक्स ला सिंग खुम चिक दिल दुना लख चिप्स ना लख थुत बसे थमा थुन चुक पी मीन बस खन टीम उन ला मुबारक बात तांस डाक बांग्लो द्रास कॉन्फ्रेंस हाल ला द्रास सुकालर नशेस लेनखन फ्रूने एसोसिएशन चिक्सचे मीना ग्रपचिक मलेंखोस गवाय मटाई नि कनातांग से खरबू छकपीशेस लेनखन उन नशेस सबखन उन एथिक पु गपची कनातांग सिंह इशुम सुपा खगलेंस दिवास ला ग्रपचे शेस लेनखन उन सबखन उन निश कबलास बर्दुन फलते बे मीना एसोसिएशन चिक्सचे इसको लस पेरा उन तांग सियादी एसोसिएशन पुस्चे मीना मोहम्मद यासिन साबरी गोयते मिंगा चोगा मेंबर इस्ट्रोलिका मिंग फेस बासिन गवे का ग्रपचे ग्रलसिर बखन उन दि ग्रप्स पु मलेंखो मीना डाक बांग्लो द्रास इज इन तांचस पेकर सी द्रास ना एसपी द्रास ला और शूजेस
1: आज द्रास डाक बेंगलो में स्टूडेंट्स की तरफ से मीटिंग का मेन मकसद नए डिस्ट्रिक्ट के तश्कील के बाद एक स्टूडेंट एसोसिएशन बनाने का था जिसमें मटाइन से लेकर खरबू तक के सभी स्टूडेंट्स ने शिरकत की। कहीं स्टूडेंट्स ने डाक बेंगलो द्रास की मीटिंग में शिरकत की। इससे पहले ही डिप्टी कमिश्नर द्रास से भी मुलाकात की गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से, जहां तमाम स्टूडेंट्स की फलाह बेबुदी के लिए बनाया जा रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशन और बाकी काम करना कुछ दिनों में ही शुरू किया जा सकता है।

0: विशेष आकाशवाणी करगिल कने जरूरत
1: Rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer un sapille pis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242।

0: हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
3: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
3: आरबीआई कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरखशां अंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का मन की बात प्रोग्राम लोगों खासकर नौजवानों को तहरीक दे रहा है। प्रोग्राम के आज के शुमारे का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा,
1: आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे दो खिलाड़ी उनकी जो बात की गुरिंदर जी के साथ, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी आम लोगों के साथ बात करके उनको कितना प्यार और किस तरह से जब देश के लिए काम करते हैं किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, ऐसा आज तक न कोई प्रधानमंत्री हुआ है ना ही आगे ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा।
0: नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज ग्रेटर कैलाश जम्मू में नाले पर तामीर किए गए दो गलियारों वाले पुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में राबता सहूलियात को मजीद मुस्तहकम बनाने और जदीदियत से हमकिनार कराने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मकामी लोगों ने इस सहूलत पर इत्मीनान का इजहार किया। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि सरकार क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। कोलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने जिले के दमहाल हांजीपुरा में अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल का जायजा लेने के बाद जालाबारी से मुतासर हुए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत का यकीन दिलाया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: कल भी कई एरियाज में नुकसान हुए बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो मैंने उसी टाइम बात की है कंसर्न ऑफिसर्स से, लेकिन जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का ताल्लुक है वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिपार्टमेंट को हिदायत दी है, जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो क्रॉप इंश्योरेंस का इशू है उसको हम इंशाल्लाह सेटल करेंगे ताकि हमारा जमींदार भाई जो है वो बच सके, उसके नुकसान जो होते हैं वो ना हो, और जो वो पेस्टिसाइड्स और बाकी चीजों के लिए बैंक लोन का इस्तेमाल करता है को फायदा हो क्रॉप इंश्योरेंस से ताकि वो आगे बढ़े और उसका जो सेव है वो सेफ रहे।
0: जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठौर ने आज राज शरीफ हल्के के चलियान गांव में जदीद तर्ज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की मुतवाजन तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। मुल्क भर में कल से खेत बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान एक माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। अभियान के दौरान खेतों में खादों के इस्तेमाल और किसानों को साइंसी मशवरे के अलावा मौसमी तब्दीली से मुतालिक बरवक्त जानकारी देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के एजाज में कल यानी 1 जून को हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद हो रही है। इस सिलसिले में कल सुबह 10:30 बजे वहां एक फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्ला अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज़ करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहद बस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में एक तरह से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। इस दौरान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वीं सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई जिसमें फौजी जवानों की हम आहंगी हुबुल वतनी और फौजी दुरुस्तगी की एक शानदार नुमाइश देखने को मिली। इस परेड से अग्निवीरों के 7वीं बैच के तहत 540 अग्निवीरों की तरबियत मुकम्मल हो गई है। पासिंग आउट परेड में फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी खास मेहमान थे जिन्होंने फौजी जवानों की मश्क और उनके फौजी मेयारात के लिए उनकी सराहना की। जीओसी ने उन्हें कौमी खिदमत में पेश रहने की ताकीद की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। फरीज़े हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हुज्जाज किराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, एक फ्लाइट 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हुज्जाज किराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हुज्जाज किराम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस

0: आवाज से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। जो हजाज किराम यहाँ से गए थे एक को छोड़ के सबों ने हज किया। अरफे के दिन ही उनकी सर्जरी थी तो वो उनका वकूफ अरफात ना हो पाया। बाकी सब आजमीन इंशाल्लाह हज करके अब वापसी उनकी है।
1: एस के एस सी सी श्रीनगर में कल से शुरू हुआ दो रोजा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा शुमारा आज भी जारी रहा। फेस्टिवल का इफ्तिताह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। अपने खिताब में उन्होंने अदीबों और कलमकारों से ताकीद की कि वो अपनी तख्लीकात के जरिए मुस्बत सोच और रवादारी को फरोग दें। फेस्टिवल के दूसरे दिन आज भी कई सरगर्मियां और प्रोग्राम मुनक्किद हुए। अपेशे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाईओं पर मुश्तमिल खबरें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने निज इसलत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में इस समाजी बुराई से बचने के इकदाम के बारे में एक शहरी बुरहान जावेद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: पहले मैं लोगों से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इस खतरनाक बीमारी से दूर रहें, क्योंकि इससे हमारे वालिदैन भी मुतासिर होते हैं और हमारी जिंदगी भी इससे मुतासिर होती है। कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसी के साथ प्राइवेट बिजनेस है हमारा या कलमकारी वगैरह है, वो इनके साथ राबता करे और इनके साथ वो अपना टाइम वक्फ करे और इस बीमारी से दूर रहे। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अपील करते हैं कि वो ये देखे कि ये मंशियात किस जगह से उभर रहा है और उसको जड़ से खत्म कर दे।
1: इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में कल यानी 1 जून को एक नशा मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। ये पदयात्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाएगी। आज तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में तंबाकूनोशी के मुजिर असरात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों की तरफ से कई जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। तंबाकूनोशी हर एक फर्द के लिए मुजिर सेहत है। ये न सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वालों को मुतासिर करती है बल्कि आसपास के लोगों खासकर बुजुर्ग अफराद पर इसके मुजिर असरात पड़ते हैं। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: सिगरेट और हुक्का सब लोगों खासकर बुजुर्गों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, COPD, चेस्ट इन्फेक्शन और बहुत सारे कैंसरों का सबब बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक रोजाना स्मोकिंग सालों की सेहतमंद जिंदगी छीन लेता है। स्मोकिंग सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि हजारों रुपए का माली नुकसान भी पहुंचाता है। स्मोकिंग का धुआं, जिसे सेकेंड हैंड स्मोक कहा जाता है, घर के दूसरे अफराद खासकर बच्चों और बुजुर्गों और दिल या फेफड़ों के मरीजों के लिए भी खतरनाक है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो एक तारीख मुकर्रर करें, सिगरेट और हुक्का घर से हटा दें, पानी ज्यादा पिएं, क्रेविंग के वक्त वॉक करें या किसी से बात करें या इबादत करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लें।
1: जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत भी कई सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस बारे में इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा।
5: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं CSR में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम CSR के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं और करीब एंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू से अपील की है कि वह मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में मौजूद हुजाज किराम की बहफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने अपने एक प्रेस बयान में हुजाज किराम, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुजाज किराम भी शामिल हैं, के साजो सामान को भी महफूज तरीके से जाए मकाम तक पहुंचाने की वजीर से अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने गलवानपुरा बड़गाम में मासूम बच्ची के कातिल को करार वाकई सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने तहकीकाती एजेंसियों से दरख्वास्त की कि वो इस वहशियाना कत्ल की तह तक जाएं और मुलव्वस अफराद को इबरतनाक सजा दें। बीजेपी के सीनियर लीडर और असेंबली में हिजब इख्तलाफ के कायद सुनील शर्मा ने उमर

0: मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ह रहे कि 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जम्मू कश्मीर तक तवसी देने का फैसला किया गया था, लेकिन ताहाल इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर के जमींदारों और किसानों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि उन्हें भी फसल बीमा स्कीम के दायरे में शामिल किया जाए, ताकि कुदरती आफात की सूरत में उन्हें माली तहफ्फुज़ हासिल हो सके। कुदरती आफात हमेशा से किसानों के लिए तबाही का सबब बनती रही है। गुज़श्ता साल भी किसानों के लिए शदीद आजमाइश का साल साबित हुआ था, और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि नया साल भी उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत किसानों के तहफ्फुज़, फसलों की बीमाकारी और जदीद मौसमी निज़ाम की फराहमी के लिए मुअस्सर इकदाम करे, ताकि उनकी मेहनत और रोजगार को महफूज बनाया जा सके। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: اردیان خبرن تبصرہ انتظا کاشوانی سری نگر کا نسنا بین بین میڈیا میں اتر گیا نانگ شوش بین ابزی کلا ہرس میڈیا میں سونچی نقب گیا نانگ شوش بین ابزی کلا ہرس ایپ ہم ریا شہر چک میگا ہر زون موبائل ایپ نیوز اون ایر کانچ از آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت وقت پوشا میں بجار گیت سونسو کا سطح ادگیا سریتی وزیر اعظم جناب نریندر مودی ریا نا سمچ نجبی رسیمن کے بعد پروگرام میں پر کی ترجمہ انتخاب میں ہلپ چکے
7: Nirin Chanulmin, Namaskar. Sninta Metserpeng, Yang Reshik, Yentang Yambutuk B, Scaps Top Jaspeka, Nalexit at Kachin Chinato. Registrity from Machik Malsane and Nuk, Mimansi Shopsna, Desert Special Lacerik, Strulbatunduk, Ganish Petun Sergepna, Somar Tiana, Lambrik Tobachanok. During us Cortanse Guzuxpo, Desert Lazuchi, Scorpion, Prospingen, Boksamet, Jamakach Dunla, Jarkhani Rancha National Senior Athletics Federation Competition, Sturtur Gayanuk, Rkestrit Gangi, Stenopa Mengar Kapkas, Kaplins Dituspeka, Luxokortans, Jvianuk, Rkestrit Hori, Rikard, Jvichak Gorovender Veer Singh, Vishal TK, Tejsun Shankar, Deo Mina Yankuldeep Kumar. Kongs Luxo category Sunyanok Rikard Josun. Subaz Goma Naskun Saga Singing Shana Mubarak Prochukat. Achonon Event Chagi Rgastrid Gangpianok Shmang Drulinchot. Meter Rgya Res Jakmanisi Nal Jons. Men's 100 meter race pen National Record Respa Sum Japanyan Chasun. The special last pen Petkan Shzenopa Nis Grander Veer Singhna Animesh Kujar Kongyambo Manki Bati Sirpyan Matis Prachavit Namaskar Animesh Yaranga Namaskar Yarang Gorender Veer Sachiri Akal.
8: Hello sir, hello sir.
7: Kasani Funun Yantes Chor Gyalchik Ashivas Yanti Jodis Narchan Lasrik Stanitans Motpo Mosikhi Anuk Jugal Bandit Humachatpin, Tadresh Tsenung Lugan Topchasun. Mengachigis Challenge Tanget, Yang Echipus Dula Yazaret. Yang Respa Sumpekang Dauba Petet. Yantis Corpum Monolo Siglus. Nasamet Snintami Tsirnian Canula, Yantis Corpencher Taspach and Argalbadu. Yantir Lazun Scorpion, Kumar Taspek Chach Pargo Shadupa.
8: Hello, sir. Nimimpo Animesh Kajurin. Nga meter nyabgana meter jibgyan nuk rekaard chakhan chigin. Nga 36 gart na in pasar riya. Dare Odeshi fyarsat. Rgal beluang Asian medal yang World University Games medal kure yonskhan in minya. Yang istung ishur sakshin yanuk school pass basar gyabna athlete se guzuks baskhanin. Seng school Ambekapur na nga pass chakhanin yang dun langas football sat pinju. Yang kowe tetus pujana ni atana amas nga fista bingser tse momo izinchi masals. Covid chotar gyapna ni achuno katos ngazes rgalkha ghetorika

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार

0: को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इंजीनियरिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल

0: आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: Girija Amma ji karib 15 school chalati hai. Unhone Mann Ki Baat se prerna lekar desh ke anek sainikon ke liye yogdan ka sankalp liya. इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने

हाउसिंग और शहरी अमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाके है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। BJP ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।